छोटी हो या बड़ी, साउंड ट्रैक बड़ा होना चाहिए. ऑलवेज दैट्स व्हाई क्लब मिर्ची इज योर फेवरेट प्लेस. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंटिका ग्रूविंग विद यू टुनाइट.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
6: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
7: लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते थे, पर असल जिंदगी में वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक फरिश्ता थे। उनका दर्द समझा, उनका हाथ थामा और एक सच्चा हीरो बनकर दिखाया।
8: और बात जब रियल लाइफ की आई तो क्या कहने, डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से पर्दे पर आलू ले लो, कांदा ले लो बेचने वाला ऐसा आइकॉनिक स्टार ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। क्रांतिवीर की जुनूनी आवाज से लेकर वेलकम के उदय शेट्टी तक, हर किरदार में उन्होंने हमें जीना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़िलिन।
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी।
13: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: प्रीबुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। आल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th अक्टूबर। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर। कंडीशंस अप्लाई।
14: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
15: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
16: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
17: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.
9: Ladies and gentlemen.

बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टिका बेबी। वीकेंड का मूड तो सेट हो ही गया है, अब बस वॉल्यूम बढ़ा दो एंड लेट्स पार्टी।

जहाँ सेलिब्रेशन हो वहाँ क्लब मिर्ची की एंट्री तो बनती है. तो चलो फिर से वापस जाएंगे ऑन द डांस फ्लोर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: इनएफिशिएंट,
3: वेरी कॉम्प्लेक्स,
4: क्लमजी, और
5: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन.
2: डिसजॉइंटेड सॉफ्टवेयर को यूज करना उतना इजी नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ, अपने बिजनेस के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. यस, यू हर्ड दैट राइट, यू कैन रन योर एंटायर बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग से लेके कस्टमर सपोर्ट, अकाउंटिंग, ऑपरेशंस या HR. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one.
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा.
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
11: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
12: ऑन अ राइड.

वेलकम बैक पीपल, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल ओंटेका। अब छुट्टी हो या ना हो, वीकेंड को सेलिब्रेशन बनाएंगे ना एक साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते थे, पर असल जिंदगी में वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक फरिश्ता थे। उनका दर्द समझा, उनका हाथ थामा और एक सच्चा हीरो बनकर दिखाया। और बात जब रियल लाइफ की आई तो क्या कहने, डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से पर्दे पर आलू ले लो, कांदा ले लो बेचने वाला ऐसा आइकॉनिक स्टार ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। क्रांतिवीर की जुनूनी आवाज से लेकर वेलकम के उदय शेट्टी तक, हर किरदार में उन्होंने हमें जीना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना

0: पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए। गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड।
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go on a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,
4: Club Mirchi.

बड़ी, साउंड ट्रैक बड़ा होना चाहिए. ऑलवेज दैट्स व्हाई क्लब मिर्ची इज योर फेवरेट प्लेस. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योनिका ग्रूविंग विद यू टुनाइट.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका बेबी। वीकेंड का मूड तो सेट हो ही गया है, अब बस वॉल्यूम बढ़ा दो एंड लेट्स पार्टी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: लोग पर्दे पर उनका गुस्सा देखते रहे, पर जमीन पर अपने फाउंडेशन के जरिए हजारों किसानों की जिंदगियों को सहारा देने वाला ये इंसान हमारा असली हीरो था। और बिग स्क्रीन पर डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से आलू कांदा बेचने का टैलेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास था। परिंदा की आग हो, क्रांतिवीर का जुनून या टैक्सी नंबर 9211 की बिंदास अकड़, उनके हर किरदार ने हमें जीना, लड़ना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड
0: क्लब मिर्ची।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टिका बेबी। वीकेंड का मूड तो सेट हो ही गया है, अब बस वॉल्यूम बढ़ा लो एंड लेट्स पार्टी।

फेस्टिवल का सीजन है, वीकेंड का रीजन है और पार्टी का मूड तो ऑलरेडी बन ही चुका है. लाइट्स अप, म्यूजिक अप, एनर्जी अप, बिकॉज दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर देगा. सो हियर वी गो गाइस, लेट्स बिगिन द सेलिब्रेशन.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा
2: मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
3: ऑन अ राइड.
0: क्लब मिर्ची.

क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टिका बेबी। वीकेंड का मूड तो सेट हो ही गया है, अब बस वॉल्यूम बढ़ा दो एंड लेट्स पार्टी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते थे, पर असल जिंदगी में वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक फरिश्ता थे। उनका दर्द समझा, उनका हाथ थामा और एक सच्चा हीरो बनकर दिखाया। और बात जब रियल लाइफ की आई तो क्या कहने, डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से पर्दे पर आलू ले लो, कांदा ले लो बेचने वाला ऐसा आइकॉनिक स्टार ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। क्रांतिवीर की जुनूनी आवाज से लेकर वेलकम के उदय शेट्टी तक, हर किरदार में उन्होंने हमें जीना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: मिर्ची बायोस्कोप साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉक्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ. अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू.
4: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.
0: क्लब मिर्ची.

Wild.

बड़ी साउंड ट्रैक बड़ा होना चाहिए. ऑलवेज दैट्स व्हाई क्लब मिर्ची इज योर फेवरेट प्लेस. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योनिका ग्रूविंग विद यू टुनाइट.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट,
5: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: लोग पर्दे पर उनका गुस्सा देखते रहे, पर जमीन पर अपने फाउंडेशन के जरिए हजारों किसानों की जिंदगियों को सहारा देने वाला ये इंसान हमारा असली हीरो था। और बिग स्क्रीन पर डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से आलू कांदा बेचने का टैलेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास था। परिंदा की आग हो, क्रांतिवीर का जुनून या टैक्सी नंबर 9211 की बिंदास अकड़, उनके हर किरदार ने हमें जीना, लड़ना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,

बड़ी साउंड ट्रैक बड़ा होना चाहिए. ऑलवेज दैट्स व्हाई क्लब मिर्ची इज योर फेवरेट प्लेस. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका ग्रूविंग विद यू टुनाइट.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टिका बेबी। वीकेंड का मूड तो सेट हो ही गया है, अब बस वॉल्यूम बढ़ा दो एंड लेट्स पार्टी।

जहाँ सेलिब्रेशन हो वहाँ क्लब मिर्ची की एंट्री तो बनती है. तो चलो फिर से वापस जाएंगे ऑन द डांस फ्लोर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

वेलकम बैक पीपल, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका। अब छुट्टी हो या ना हो, वीकेंड को सेलिब्रेशन बनाएंगे ना एक साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते थे, पर असल जिंदगी में वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक फरिश्ता थे। उनका दर्द समझा, उनका हाथ थामा और एक सच्चा हीरो बनकर दिखाया। और बात जब रियल लाइफ की आई तो क्या कहने, डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से पर्दे पर आलू ले लो, कांदा ले लो बेचने वाला ऐसा आइकॉनिक स्टार ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। क्रांतिवीर की जुनूनी आवाज से लेकर वेलकम के उदय शेट्टी तक, हर किरदार में उन्होंने हमें जीना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
3: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
4: on a ride.
5: Club Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi Bioscope. Saad Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर ये फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड। दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: Only on Mirchi, it's hot.
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन।

चाहे छोटी हो या बड़ी, साउंड ट्रैक बड़ा होना चाहिए. ऑलवेज दैट्स व्हाई क्लब मिर्ची इज योर फेवरेट प्लेस. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका ग्रूविंग विद यू टुनाइट.

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए।

जहाँ सेलिब्रेशन हो वहाँ क्लब मिर्ची की एंट्री तो बनती है. तो चलो फिर से वापस जाएंगे ऑन द डांस फ्लोर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: लोग पर्दे पर उनका गुस्सा देखते रहे, पर जमीन पर अपने फाउंडेशन के जरिए हजारों किसानों की जिंदगियों को सहारा देने वाला ये इंसान हमारा असली हीरो था। और बिग स्क्रीन पर डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से आलू कांदा बेचने का टैलेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास था। परिंदा की आग हो, क्रांतिवीर का जुनून या टैक्सी नंबर 9211 की बिंदास अकड़, उनके हर किरदार ने हमें जीना, लड़ना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टिका बेबी। वीकेंड का मूड तो सेट हो ही गया है, अब बस वॉल्यूम बढ़ा दो एंड लेट्स पार्टी।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
3: Radio Mirchi, it's hot.

लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते थे, पर असल जिंदगी में वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक फरिश्ता थे। उनका दर्द समझा, उनका हाथ थामा और एक सच्चा हीरो बनकर दिखाया। और बात जब रियल लाइफ की आई तो क्या कहने, डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से पर्दे पर आलू ले लो, कांदा ले लो बेचने वाला ऐसा आइकॉनिक स्टार ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। क्रांतिवीर की जुनूनी आवाज से लेकर वेलकम के उदय शेट्टी तक, हर किरदार में उन्होंने हमें जीना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot
1: and अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉक्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ. अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू.
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. रेडियो मिर्ची इट्स हॉट.
2: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते थे, पर असल जिंदगी में वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक फरिश्ता थे। उनका दर्द समझा, उनका हाथ थामा और एक सच्चा हीरो बनकर दिखाया।

बाद जब रियल लाइफ की आई तो क्या कहने, डिजाइनर सूट पहनकर पूरी शान से पर्दे पर आलू ले लो कांदा ले लो बेचने वाला ऐसा आइकॉनिक स्टार ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। क्रांतिवीर की जुनूनी आवाज से लेकर वेलकम के उदय शेट्टी तक हर किरदार में उन्होंने हमें जीना और हंसना सिखाया। ऐसे लोग रगों में दौड़ते हैं जिन्हें मिट्टी में छुपाना मुमकिन नहीं होता। नाना पाटेकर को मिर्ची का सलाम।

0: मैं खत्म तो खेल खत्म।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

लो पास में ईश्वर के पास में देवराग के साथ 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: गायत्र्यास्तु परम नास्ते। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है, उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री, सावित्री त्रिपदेक्षरे, अजरे अमरे मातः, त्राहि माम शरणागतम्। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया एसआर मराठे साहब का। वो कहते हैं कि जब बुजुर्ग अपने एक्सपीरियंस को घर वालों को समझाना चाहें लेकिन उनकी बातों को इंटरफेरेंस करना समझा जाए तो फिर क्या करें?
3: इसीलिए जब भी हम कुछ समझाते हैं तो समझाने के बाद डिटैच होना बहुत जरूरी है।
2: हाँ, कि कह दिया और फिर अब देखते हैं वो करना चाहते हैं ना।
3: हमें जब हम परिवार को संभालते हैं ना तो ट्रस्टी बनना चाहिए, गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी। ट्रस्टी में ओनरशिप नहीं होता। आप जब देखो, एक है आपने कुछ समझाया और फिर एक्सपेक्टेशन कि आपको ऐसे ही करना चाहिए,
2: सही बात।
3: तो उसमें थोड़ा कंट्रोल भी होता है। तो सामने वाला किसी भी सोल को कंट्रोल नहीं अच्छा लगता। तो वो सफोकेट होती है, वो आपसे दूर जाना शुरू कर देती है। आपके अंदर थोड़ा डर भी होता है क्योंकि आपको कई बार वो गलत करते हुए दिख रहे होते हैं।
2: सही बात।
3: तो आप अपने अनुभव से समझाने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं समझते तो आप थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो कंट्रोल से कई बार वो आत्मा जो है
2: और
3: दूर हो जाती है, सफोकेट हो जाती है और दूर हो जाती है। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप शेयर जरूर करें।
2: जी,
3: अपने विजडम को किसी के साथ शेयर करना गलत नहीं है, लेकिन फिर आपको डिटैच होना पड़ेगा कि ये उसकी इंडिपेंडेंट जर्नी है। उसके बाद भी अगर वो कोई गलती करता है तो कई बार कहते हैं ना, कई लोग पर जब हाथ जलता है तो ही सीखते हैं।
2: जी।
3: तो कई बार फिर कोई अपनी मिस्टेक से भी सीखता है। सी, एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी एंड दे विल मेक सम मिस्टेक्स एंड दे विल लर्न फ्रॉम देम। ऐसा नहीं सोचे कि हमारे जो अपने हैं वो कोई गलती करे नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनका कार्मिक अकाउंट भी है, उनकी जर्नी भी है और कुछ गलतियां उनसे होंगे भी।
2: आपने मुझे ना, मैनेजमेंट के गुरु भी हैं पीटर एफ ट्रकर, उनकी एक बात याद दिला दी। वो कहते हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज हियरिंग व्हाट इजंट सेड। तो जब हाथ जलता है और जब आप आते हैं वापस तो आपको ऑटोमेटिकली वो बात याद आ जाती है।
3: जी।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपनों को सपोर्ट करते हुए उनका दर्द अपने ऊपर हावी होने देने से कैसे बचे, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जब आप एक ही घर में रह रहे हैं और आपने ये सेम चीज देखी है, आपने सिचुएशन देखी है, आपका एक्सपीरियंस है, और आप सामने वाला आपके पास आया, उसको बता रहे हैं भैया ये मत करो, फिर भी वो कर रहे हैं जैसा आपने कहा, वो होते हुए देखना बड़ा तकलीफदायक होता है,
4: क्योंकि आप अटैच है ना।
3: हाँ,
4: इसलिए तो अच्छी डिटैचमेंट और अटैचमेंट में क्या है, हम कोई फिजिकल अटैचमेंट डिटैचमेंट की बात नहीं कर रहे,
3: इमोशनल जी।
4: जब आप इमोशनली किसी से अटैच होते हैं तो वो जब वो हिलते हैं तो आप भी हिलते हैं।
3: हाँ, हाँ।
4: आप इमोशनली अटैच्ड हैं, आप क्यों चाहते हैं कि वो बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि आपको डर है कि अगर वो करेंगे
3: तो बुरा होगा,
4: तो कुछ गलत होगा, तो वो दुखी होंगे तो आप भी दुखी होंगे। कभी कभी वो भी इतना दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैंने किया नहीं होता तो मेरे जीवन में रिग्रेट रह जाता है, ये तो मुझे करना ही था,
3: लेकिन हम बात पकड़ के
4: रखते हैं, हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं। डिटैचमेंट का मतलब क्या है, व्यक्ति से डिटैच नहीं,
3: सिचुएशन,
4: आपने अपना एक्सपीरियंस दिया, फिर आपने उनको फ्रीडम दिया, फिर उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो किया, अगर वो आज दर्द में हैं भी किसी कारण से, लेकिन आप उनके दर्द का इम्पैक्ट आपके ऊपर ना हो, एंड यू आर स्टिल देयर टू हेल्प देम।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर अक्षिता शर्मा हैं, वो लिखती हैं कि पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन फ्रेंड्स और डिस्ट्रैक्शंस बार बार फोकस तोड़ देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाएं?
3: ये एक एक्सक्यूज है। फ्रेंड्स सबके पास है और डिस्ट्रैक्शंस भी सबके पास हैं, लेकिन कमजोर मन उसमें फंस जाता है। इसका मतलब ये नहीं है हम फ्रेंड्स नहीं रखते, लेकिन शक्तिशाली मन क्या कहेगा, ये समय फ्रेंड्स के लिए है, इतना समय घूमने के लिए है, ये समय स्टडी के लिए है, तो आपको कोई हिला नहीं सकता, यू फोकस्ड। लेकिन जब आप कमजोर होते हैं तो कोई जो आपको कहता है, जहां पर आपको लेकर के जाना चाहता है, सो इट इज योर वीक माइंड।
2: बेसिकली अक्षिता शर्मा जी के बारे में साहिर लुधियानवी साहब ने बहुत साल पहले लिख दिया था, चित्रलेखा नाम की एक फिल्म आई थी, उन्होंने गीत लिखा था उसमें कि मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने जिसका मोह करे। तो शी इज गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम कि मेरा मन एक जगह नहीं टिक रहा, तो क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए।
3: मतलब हम क्या करते हैं कि अपने को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहते, तो ब्लेम करना चाहते हैं।
2: तो कौन तुम जिम्मेदार हो?
3: फ्रेंड्स जिम्मेवार हैं। तो सबके जीवन में फ्रेंड्स हैं और डिस्ट्रैक्शंस हैं। सोशल मीडिया सबके पास है, नेटफ्लिक्स सबके पास है, दुनिया भर के ऑप्शंस जहां पर हम अपना टाइम रख सकते हैं वो सबके पास है। बट आप अपने को कहते हैं ना, आप अपने मन को समझाते हैं कि अभी मुझे ये
2: करना है,
3: करना है
2: जी।
3: आपने भी अभी देखा होगा जो अभी टेनिस का टूर्नामेंट था, कितना उसमें वो फोकस था, जो ग्रैंड स्लैम का फाइनल था, कि वो जीत भी गए तो उनको पता नहीं चला,
2: पता ही नहीं चला।
3: मैंने तो कोच हैड टू टेल हिम कि आप जीत गए। द फोकस वाज ऑन दैट वन पॉइंट। मैंने ये कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, पास्ट का पॉइंट में क्या हुआ नहीं पता, आगे क्या होगा नहीं पता, मिनट में है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जब आप उस मोमेंट में होते हैं तो कोई बैगेज नहीं है, आप फुल अपना कंसंट्रेशन, फुल फोकस के साथ आप वो मोमेंट को जी रहे हैं। जो होगा वो आपके हाथ में नहीं है, पर आपने तो अपना 100% दिया ना। लेकिन ये है मेंटल टफनेस, कि आप पास्ट को हटाकर, फ्यूचर को हटाकर, वरी को हटाकर, पेन को हटाकर, ओनली दिस मोमेंट इज रियल, और उस मोमेंट को आप एंजॉय कर सकते।
2: तो अपने फ्रेंड्स को हटाओ, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, इस मोमेंट में फोकस करो, तभी आपका कुछ होगा।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, SKA नामिक किसी इंसान ने हमें सवाल भेजा है कि सब कुछ पास होने के बाद भी मन अशांत क्यों रहता है, मेडिटेशन के बाद भी पूरी शांति क्यों नहीं मिलती।
3: कई कारण हो सकते हैं। एक, जब वो कह रहे हैं कि सब कुछ है तो भी शांति नहीं है, तो वो सब कुछ कमाया कैसे है, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कई बार।
2: सही तरीके से कमाया या ना ही कमाया,
3: ये जरूरी है, क्योंकि हमने सब कुछ अक्वायर कर लिया, लेकिन जो हम अक्वायर करते हैं उसमें दो ट्रांजैक्शन चलती हैं। एक होती है जो फिजिकल ट्रांजैक्शन आपको दिखाई देती है, आपने किसी को कुछ दिया, आपने धन कमाया,
2: सही बात।
3: लेकिन एक होती है इमोशनल लेवल पर ट्रांजैक्शन, कि उसके अंदर आपने अगर हमेशा दूसरे का सुख देखा है तो वो सदा आपको जीवन भर दुआएं मिलेंगी। एक प्रोडक्ट भी है, मैंने कैसे भी करके आपको प्रोडक्ट बेच दिया और मैंने धन कमा लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट सही नहीं था, वो प्रोडक्ट उसके लिए जरूरी नहीं था, मैंने उसको किसी तरह से कन्विंस कर लिया, और बाद में जब वो प्रोडक्ट यूज करता है और उसको रियलाइज होता है कि ही और शी वॉज चीटेड, तो उसके मन के जो थॉट्स हैं, उसके जो वाइब्रेशन है, एक तरह से वो बददुआ होती है। तो कभी भी जीवन में कुछ भी अक्वायर, चाहे वो धन है, पोजीशन है, अवार्ड है, गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। किसी के मन को दुख देकर के नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा तरीका जिसमें लोगों को आजकल बड़ा प्राउड लगता है, पर वो तरीका हमारा राइट होना चाहिए। राइट तरीके से अगर आप चीजें अक्वायर करेंगे, वो कम होंगी लेकिन सुख देंगी और आपके घर में बरकत लेकर के आएंगी, एक चीज। दूसरा, जो चीजें हमने अक्वायर की हैं, आपको लगता है सब कुछ है फिर भी खुशी नहीं है, हो सकता है आपने सब चीजें बड़े सही तरीके से अक्वायर की हैं और वो चीजें आपको सुख दे रही हैं फिजिकल लेवल पर, लेकिन मन का सुख मिलता है कि आपके चिंतन की धारा क्या है।
2: सही बात।
3: तो मन में अगर आपने कोई पुरानी बातें पकड़ के रखी हैं, या कोई आने वाले समय की बहुत चिंता है, या कईयों की कमी कमजोरियां देख देख करके आप उसका चिंतन करते रहते हैं, ब्लेम कंप्लेन में रहते हैं, तो भी तो कमजोर मन क्या कर रहा है, गलत सोच रहा है, तो वो चिंता ही क्रिएट करेगा या दुख क्रिएट करेगा। तो फिर अपने मन की चिंता, जो उसका थॉट प्रोसेस है, उसको चेंज करना जरूरी है।
2: तो वो कह रहे हैं, इसके जो है वो कह रहे हैं कि मेडिटेशन से भी हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में उनको क्या कहें?
3: वो कह रहे हैं मेडिटेशन से पूरी शांति नहीं मिल रही है। मेडिटेशन प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने मेडिटेशन शुरू किया और 7 दिन के बाद एकदम आप पीसफुल हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर कोई सही रीति से मेडिटेशन को समझे ना, तो आपकी जितनी भी नेगेटिव लेयर्स हैं वो सब बाहर आती हैं।
2: अच्छा।
3: आप एक तरह से फर्स्ट टाइम अपने से मुलाकात कर रहे होते हैं। और अंदर में जो देखो, हमारे दुख का जो कारण है, अशांति का जो कारण है, वो हमारे अंदर की कोई ना काम है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, रिजेंटमेंट, बिटरनेस, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप सही रीति से मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप अपने साथ रिश्ता जोड़े हैं। और जब आप अपने साथ रिश्ता जोड़े हैं तो अंदर के ये जो फ्लॉज हैं वो आपको दिखाई देते हैं, रियलाइजेशन। फिर एक यात्रा शुरू होती है हायर बीइंग से अपने अंदर शक्ति भरना और इस एक एक दाग को निकालते जाना। और जितना दाग निकालते जाएंगे, प्योरिटी बढ़ती जाएंगी, शांति और सुख ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा।
2: सही।
3: तो पवित्रता सुख शांति की जननी है, और अगर सुख शांति नहीं है, दुख अशांति है, तो अपवित्रता है, मतलब सम प्रकार की इम्प्योरिटी है, कोई ना कोई वीकनेस है। तो आप जल्दी नहीं करें, मेडिटेशन की जर्नी को एंजॉय करें, ये एक प्रोसेस है, अपने को जाने, अपने को परिवर्तन करें, एंड देन यू विल एक्सपीरियंस नॉट जस्ट पीस बट ब्लिस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
2: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
4: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
5: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
4: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
11: Positivity koi location thodi hai ki map pe dala aur pahunch gaye. It's a journey. Chalo is journey pe with Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi, it's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, विकास गुप्ता जी ने लिखा है कि जब आप प्रमोशन डिजर्व करते हैं लेकिन मैनेजर बार बार रोक रहा हो तो पेशेंस रखें या एक स्टैंड लें।
3: कोई बात आपको कहनी है, आप असर्टिवली कह सकते हैं
2: जी,
3: लेकिन इस बात पर कंप्लीट फेथ रखें कि जो आपको मिलना है वो मिलना ही है।
2: बिल्कुल,
3: जो कहते हैं टाइमिंग,
2: मतलब
3: आपने बीज बोया तो उसका फल तो निकलना ही है, तो वो फल निकलेगा ही। तो ये प्रकार का एक रिजेंटमेंट होना कि मुझे तो मिलना चाहिए पर ये मैनेजर रोक रहा है, तो आपके जीवन में जो आना है ना उसको वैसे कोई रोक नहीं सकता।
2: सही बात,
3: उसने आना ही है। वो बोया हुआ बीज का फल, हर बीज का जो कॉन्सिक्वेंस है वो आना ही है।
2: आप पानी देते रहो,
3: आप पानी देते रहो, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि कुछ गलत हो रहा
2: तो
3: है,
2: बात करो।
3: हाँ, लेकिन बात करने का तरीका,
2: हाँ, वो जरूरी है,
3: वो बहुत जरूरी है।
2: और
3: कोई नया बीज ऐसा नहीं बो दो
2: जिसके कारण पुराना बीज भी खराब हो जाए,
3: जिसके कारण वो कॉन्सिक्वेंस भी खराब हो जाए।
2: तो तरीका भी है, और उसके बात करने के बाद शायद कॉन्सिक्वेंसेस आपके फेवर में ना हो, इसका भी आपको मतलब ध्यान रखना चाहिए।
3: हाँ, देखो कॉन्सिक्वेंस अपने समय पर आता है। एक तो देखो ये चीज का हमें फेथ होना चाहिए, और लौट कर जरूर आएगा, पर अभी आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, वो नहीं पता। इसीलिए तो फिर कहते हैं ना, कर्म कर फल की इच्छा ना कर। क्यों? क्योंकि जो भेजा है वो तो लौट कर आएगा, लेकिन उसका टाइमिंग किसी को नहीं पता। और इसीलिए फिर हम सब होप के साथ, फेथ के साथ चलते हैं कि अच्छा वक्त आएगा। वो फेथ भी उसी को होता है जिसने अच्छे कर्म किए। अगर आपका कर्म ठीक है और आपको अपने कर्म पर पूरा विश्वास है, तो आपको इस बात पर भी फेथ होता है कि आपकी ये डेस्टिनी चेंज होनी ही है। क्योंकि जो अगर बुरा वक्त चल रहा है तो वो कोई पुराना बीज है।
2: सही बात है,
3: आज का बीज जो आपने बोया है वो तो बिल्कुल ठीक है, और उसका अच्छा फल आपको मिलना भी है। तो जीवन में थोड़ी कंटेंटमेंट होनी चाहिए, थोड़ी संतुष्टता होनी चाहिए, इतनी बिटरनेस लाइफ में नहीं होनी चाहिए। बाकी हाँ, कोई चीज आपको गलत लगती है उसको कहना, लेकिन कहने के लिए कहते हैं ना, मना कम्युनिकेशन में भी कई चीजें होती हैं।
2: हाँ।
3: एक है इंटेंशन, किस इंटेंट से आप कह रहे हैं। दूसरा है डिलीवरी,
2: किस तरह से कह रहे हैं,
3: किस तरह से कह रहे हैं। तीसरा है टाइमिंग, वो सुनने की स्थिति में भी
2: सही
3: है।
2: बात, हाँ।
3: बस कह देना तो जरूरी नहीं है ना, सामने वाला वो सुनने की स्थिति में भी है। और चौथा है पर्सन, वो व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल है आपके लिए। तो इंटेंट, डिलीवरी, टाइमिंग एंड पर्सन,
2: वेरी नाइस।
3: चारों को ध्यान में रखकर जो कम्युनिकेट करना है करे, कम्युनिकेट करने में कोई हर्जा नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हार्ट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है श्रेया घोष से, बैंडल यानी कि बंगाल में है ये। वो लिखती हैं कि सिस्टर क्या आप प्लीज बता सकती हैं कि मैं अपना फोकस कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ती हूँ और उसके बाद मेरा ध्यान भटक जाता है, फालतू बातें सोचने लगती हूँ, जैसे स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ, मम्मी ने क्या बोला, फ्रेंड्स ने स्कूल में मेरे साथ कैसा बिहेव किया वगैरह वगैरह।
2: फोकस और कॉन्सेंट्रेशन अगेन एक स्ट्रॉन्ग माइंड की निशानी है। जब आपका मन शक्तिशाली है, शक्तिशाली मन किसको कहते हैं, मुझे जो सोचना है, जितना समय सोचना है, अपने मन को जहां लगाना है मैं लगा सकता हूँ।
1: जी,
2: मेरा मन मेरे कंट्रोल से चलता है।
1: जी,
2: कमजोर मन का क्या हो गया, वो आपको कंट्रोल कर रहा है।
1: हाँ।
2: कह रहे हैं मेरा मन।
1: हाँ।
2: मेरा मन कहते, तेरा मन तो नहीं कहते ना, मेरा मन कहते हैं। तो मैं मन का मालिक होना चाहिए।
1: हाँ।
2: लेकिन मन मेरा मालिक बन गया।
1: सही बात है।
2: अब उसको जहाँ जाना है, जो सोचना है, वो कर रहा है।
1: वो कटी पतंग की तरह कहीं भी जा रहा है।
2: कहीं भी जा रहा है। एंड यू लूजिंग टाइम, यू लूजिंग फोकस, यू लूजिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब अपने मन को कैसे शक्तिशाली बनाए वो देखते हैं। दो तीन चीजें। एक, आपका मन क्योटिक रहेगा अगर आप बहुत इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं।
1: जी,
2: वो नॉइजी हो जाएगा, वो नहीं कंसंट्रेट कर सकता। ये चीज बहुत समझने की, हमें लगता है हमें बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ पता होना चाहिए, तब हम बहुत इंटेलिजेंट होंगे। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आप बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर के उस मन को प्रोसेस नहीं कर पाता।
1: सही बात है।
2: वो भी एक मशीन की तरह है, उसको भी उतनी इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे जैसे डाइजेशन है, पेट है। आप कितना भी हेल्दी खाना खिला दो,
1: सही बात है, लेकिन अगर ज्यादा खाया तो फिर वो तो इंडिजेशन तो होगा ही।
2: हाँ, मैंने जैसे कोई कितनी भी अच्छी चीज हो, पानी है,
1: सही बात है,
2: बहुत अच्छा है,
1: लेकिन ज्यादा पीने पे बीमारी हो,
2: ज्यादा पीने पर बीमारी होगी। सिमिलरली फॉर इन्फॉर्मेशन, आप देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, गाने हैं, फिल्म्स हैं, न्यूज है, इतना इतना इतना अंदर ले रहे हैं, तो

0: परसेंट टाइम तो हमारा मन या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है, क्यों? आपने उसी दिन उसको लेट गो नहीं किया
1: जी,
0: उसको क्लोजर नहीं दिया, उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया, आपने हीलिंग नहीं करी. सम 20 मिनट्स, 10 मिनट्स जर्नलिंग करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा मी टाइम. दिस इज जस्ट अ बज वर्ड, मी टाइम. है क्या मी टाइम? मी टाइम इज बेसिकली स्पेंडिंग दैट टाइम विद यू एंड हीलिंग योर सेल्फ. कुछ भी नेगेटिव है, कुछ भी एक्स्ट्रा है, उसको आप करें तो आप प्रेजेंट में रह पाएंगे और फोकस कर पाएंगे. एंड थर्ड, ट्राई एंड स्टडी इन द मॉर्निंग.
1: हाँ, ये आपने पहले भी कहा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं.
0: नहीं, बच्चे थके हुए मन से पढ़ रहे हैं.
1: हाँ, सुबह सुबह आपकी एनर्जी भी हाई होती है, डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं, बहुत खूबसूरत समय होता है.
0: थका हुआ मन कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा? थका हुआ मन मना आप सुबह उठे, समझो आप लेट उठे, फिर 6-8 घंटे तो आजकल बच्चे क्या करेंगे, ये देख लिया, फ्रेंड्स के साथ चले गए, स्कूल कॉलेज में चले गए, अब रात को 8 बजे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं.
1: मन थका हुआ,
0: मन थका हुआ है. थका हुआ मन फोकस और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है.
1: सही कह रही.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए

0: अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक सवाल आया सिस्टर श्रेया की। गुड मॉर्निंग विशाल और सिस्टर श्रेया, मैं संजय थाने से बात कर रहा हूँ और मेरे बड़े भाई पिछले 10 सालों से बात नहीं कर रहे। वजह है बंटवारा। उसके चलते हर रोज सुबह मुझे उसके प्रति काफी नकारात्मक विचार आते हैं कि वो कभी सुखी नहीं रहेगा। मैं इस विचार से बाहर कैसे निकलूं?
1: जब आप ये विचार करें कि वो कभी सुखी नहीं रहेगा तो एक्चुअली तो आप सुखी नहीं रह रहे।
0: यू हैव टू लेट गो फर्स्ट।
1: सही बात है। बिकॉज़ लुक एट द थॉट, जो आप सोचेंगे वो आप फील करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: अब मैं सुबह सोच रही हूँ वो कभी सुखी नहीं रहेंगे, उनको जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, उनके साथ गलत हो, ये मैं सोच रही हूँ।
0: सही बात है।
1: ये वो नहीं सोच रहे, ये मैं सोच रही हूँ। तो दुखी कौन होगा?
0: मैं।
1: और मैं दुखी होंगी फिर उसका इम्पैक्ट मेरे हेल्थ पर पड़ेगा, मेरे काम पर पड़ेगा, मेरी तकदीर के ऊपर पड़ेगा।
0: सही बात।
1: आप उनका नुकसान नहीं कर रहे, पहली चीज तो आप अपना नुकसान कर रहे।
0: क्या बात।
1: फिर आपका जब नुकसान होगा ना तो हम पता क्या कहेंगे? पता नहीं मुझे किसकी नजर लग गई।
0: उन्हीं की होगी।
1: उन्हीं की होगी।
0: तो ब्लेम भी उन्हीं को करेंगे।
1: पर हम कौन किसको नजर लगा रहा है?
0: अपने आप को खुद को, की विचार भी मेरे ही हैं।
1: रोज सुबह उठ करके अपने को नजर लगा रहे हैं तो आपके साथ ही जीवन में कुछ गलत होना शुरू हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट थिंकिंग राइट। चलो हो गया बंटवारा, जो होना तो हो गया, अब हम भी सुखी रहे। वो भी सुखी रहे।
0: और द वेरी फैक्ट कि संजय आपने इसके बारे में सोचा और आप इसको बदलना चाहते हैं, आई थिंक आपने पहला कदम ले लिया है और आप आगे भी जरूर सफल।
1: कभी कभी हम बदलना नहीं चाहते पर वो हमें जैसे कांटा चुभे जा रहा होता है ना। अब वो चुभ रहा है, तकलीफ हो रही है, तो इसलिए भी ऐसा होता है मैं क्या करूं। पर आप जो कह रहे हैं वो जरूरी है। बदलेंगे नहीं, कांटे को निकालेंगे नहीं
0: तो बदलाव,
1: कांटा तो आपको ही चुभ रहा है ना।
0: सही बात।
1: एवरी टाइम वी आर थिंकिंग नेगेटिवली फॉर समबडी एल्स, वी आर हार्मिंग
0: आवरसेल्व्स। ये समझना
1: जरूरी है। ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग समबडी एल्स टू डाई।
0: जी बिल्कुल।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या, घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
2: It's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सेपरेशन को सोल्यूशन नहीं लास्ट ऑप्शन क्यों माना जाना चाहिए, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर अंजन दत्त जो हैं वो बंगाल के बहुत अच्छे आधुनिक सिंगर हैं और मुझे बहुत पसंद है, उनकी बहुत प्यारी कविता है, उसमें कुछ लाइनें हैं बंगला में है कि चौधरी देर एकुश तोलाए मोदेर नेशाए ऊंचू गोलाए झगड़ा चौले गोभीर रात्रे लाज लज्जार बांध भेंगे जाए। इसका मतलब ये है कि चौधरीज जो हैं वो 21 माले पे या फ्लोर पे रहते हैं और उनकी ऊंची आवाज में दारू के नशे में बहुत झगड़ा होता है और लाज सम्मान की सारे जो हदें हैं वो पार हो जाती हैं। इस बारे में वो दो लाइनें बहुत खूबसूरती से लिखते हैं। संपत्ति के बारे में कोई प्रॉब्लम है, वो अपने रियल लाइफ को लेके बहुत सारे गाने लिखते थे, और शायद कभी ना कभी इनके साथ ऐसा परिवार में या बिल्डिंग में हुआ होगा, उन्होंने लिखा होगा। और कई बार ये हम अपने आसपास भी देखते हैं कि बहुत बार नेबर्स कुछ होते हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से झगड़ा करते हैं, नॉइजी होते हैं, लाउड होते हैं एक्सेट्रा, और हम अक्सर कहते हैं कि जानवरों के तरह रहने से बेहतर है कि दोस्त की तरह अलग अलग हो जाओ। इट्स ओके टू जस्ट स्प्लिट अप, रोज लड़ाई मत, झगड़ा मत करो। लेकिन उससे जो उपजी लड़ाई जो होती है, ये जो रोजमर्रा की जो मुठभेड़ होती है, उससे जो उपजी जो लड़ाई होती है, ऐसे इतना उथल पुथल वो पैदा करता है, उससे आखिरकार सबको अपनी गलती को स्वीकार करने का मौका भी मिलता है। ये जरूरी नहीं है या अलग होना ही बेहतर है।
4: मेरे हिसाब से अलग होना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ये कमजोरी की निशानी, अंटिल एंड अनलेस कोई सीरियस बात है, जैसे हम कई बार कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस है तो वो लास्ट ऑप्शन नहीं होता, वो फर्स्ट ऑप्शन होता है। फिजिकल अब्यूज है तो वो लास्ट ऑप्शन नहीं होता, वो फर्स्ट ऑप्शन होता है। लेकिन जब अब परिवार है, उसमें 4-5 जने हैं, बिल्कुल अलग हैं, राय अलग है, सोचने का तरीका अलग है, चॉइसेस अलग हैं, खाना अलग पसंद है, छोटी छोटी बातें, किसी को पंखा ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, कितनी छोटी छोटी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वहां पर हमें संस्कारों की टकराव करने की जगह संस्कारों की रास करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने रास लीला देखी होगी गुजरात में गरबा के समय क्या होता है, इवन इन मुंबई सबके

0: हाथ में दो दो डांडिया है तो डंडे ही ना, और किसी को डांस आता है किसी को नहीं आता, लेकिन हम क्या करते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके चलते हैं तो वो डांस होता है
1: जी।
0: अगर आप न मिल करके करें, कोशिश नहीं करें, तो वो युद्ध का मैदान बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे ही जीवन के अंदर सब अलग है। एवरीबडी हैज बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी। मेरी जर्नी के अनुसार मेरे संस्कार होते हैं, मेरी नेचर होती है, तो उसमें मिल करके, मतलब मिल करके चलना ही, रिश्तों के अंदर मिल करके चलना होता है। किनारा करने का ऑप्शन तो दिखाता है कि हम इमोशनली वीक हैं, हम मिल करके नहीं चल पा रहे हैं, इट इज टेकिंग अ टोल ऑन मी, उसके कारण हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत दर्द में जा रहे हैं, तो फिर कहते ठीक है फिर किनारा कर लो।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। Celebrate this Diwali with RajJewels.com.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe. Only at RK Jewels. RK Jewels. Best quality, best price.
6: Nine nights, one divine spirit.
7: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway.
6: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.
7: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharat Purnima Garba on the 25th.
6: Gather with family and experience the divinity. Visit gayatricenter.org.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
13: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
14: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
13: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
15: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID
16: 2108069।
17: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
18: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
17: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
6: ऑन Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
19: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ईगो से हुई लड़ाई रिश्तों को कैसे नुकसान पहुंचाती है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, लेकिन जब रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज चिल्ला चिल्ली हो रही है, आसपास के जो पड़ोसी है वो भी आपसे परेशान है, तो क्या साथ रहना सिर्फ एक दिखावा बन के नहीं रह गया? क्योंकि सबको अपनी अलग अलग पहचान भी चाहिए।
4: रोज झगड़े क्यों हो रहे हैं?
3: अब वो तो मुझे नहीं पता।
4: मैजिकली तो झगड़े खत्म नहीं होंगे ना
3: जी।
4: देखो, जो दो जने प्यार से भी रहते हैं ना, वो भी सेम नहीं होते, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की विशेषताओं को समझ करके उनके साथ चलना सीख लिया होता है। आप कोई भी हैप्पी मैरिज में जाकर पूछो, आप दोनों सेम है?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस एडजस्टमेंट रहे होंगे,
4: और वो कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट उन्होंने हमेशा दर्द से नहीं किए।
3: नहीं, कभी कभी बड़े प्यार से भी किए।
4: प्यार से किए, क्योंकि उन्होंने समझा कि ये इनकी विशेषता है, ये इनकी कमी है, इनकी कमी को मुझे स्वीकार करना है, विशेषताओं को करना है, मिल करके चले। अब जिस घर में रोज झगड़े हो रहे हैं, उसमें क्या झगड़े हो रहे हैं? झगड़े का कारण है एक्सपेक्टेशन ना। आपको मेरे तरीके से ही चलना पड़ेगा। व्हेन यू अंडरस्टैंड कि वो मेरे तरीके से नहीं चल पाएंगे, वी आर डिफरेंट, वी अलाउ ईच अदर टू बी व्हाट दे वांट टू बी, उनको स्पेस देते हैं, उनको कंट्रोल नहीं करते, तो फिर एंगर और ये सब नहीं होता। अब पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको साथ रहना है कि अलग होना है। पहले तो एक ये डिसीजन है। अगर साथ रहना है तो अपनी पावर को बढ़ाएं, सामने वाले को समझने की कोशिश करें, एक्सपेक्टेशन को एक्सेप्टेंस में बदलें, कंट्रोल को इन्फ्लुएंस में बदलें, कोई बात कहनी है उसके कहने के तरीके को बदलें। झगड़े का कारण है दोनों की ईगो आपस में टकरा रही है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
2: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
1: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
3: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
6: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम। साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल
7: 732-397-0057।
8: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख की विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
9: अरे कहना क्या चाहते हो?
8: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244। दैट्स 9033 मिर्ची। और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
11: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
12: Plus, grooms के लिए royal sherwanis.
11: Miss India, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Islington.
13: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
14: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
15: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
14: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
16: हेलो, नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
17: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
18: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू।
17: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
18: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
6: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
1: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
2: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
1: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
3: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आइए समझते हैं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
2: तो परिवार में किस हद तक आप समझौता कर रहे हैं, कब तक आप बोले कि हाँ दिस मच एंड नॉट मोर?
3: समझौता नहीं है, समझौता तो वर्ड ही ऐसा लगता है, समझौता तो बने वो एक सप्रेशन 4 महीने होगा। इट इज नॉट समझौता, इट इज अंडरस्टैंडिंग। सी लुक एट इन योर फैमिली, एवरी फैमिली, मुझे एक बात बताएं, हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे हैं ना, क्या वो हमारी तरह होते हैं?
2: नहीं, बिल्कुल अलग होते हैं।
3: जब हमारे बच्चे हमारी तरह नहीं हो सकते, हु कम फ्रॉम अस, हमारा ब्लड रिलेशनशिप है उनके साथ, दे कम फ्रॉम अस। कई लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं दे आर माय एक्सटेंशन, वो भी हमारी तरह नहीं होते और थोड़े अलग नहीं होते,
2: बहुत अलग होते हैं,
3: इतने अलग होते हैं कि कई बार हम कहते हैं
2: हमारे बच्चे
3: हमारे बच्चे हॉस्पिटल में कोई बदल तो नहीं गया यहाँ तक, बिकॉज वो बच्चा नहीं है, वो हस्बैंड नहीं है, वो वाइफ नहीं है, इट्स अ सोल ऑन अ जर्नी। तो वो सोल की जो आइडेंटिटी है, क्वालिटी है, नेचर है, वो डिपेंड करेगी उसकी जर्नी पर, उसके एक्सपीरियंसेस पर। वो ट्रस्ट करता है, डाउट करता है, ऑनेस्ट है, बात बात पर झूठ बोल देता है, डिपेंड्स ऑन उनकी जर्नी क्या रही है, कितनी ट्रॉमेटिक रही है, कितनी लविंग रही है। हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी जर्नी से कि ऐसे ट्रस्ट करना चाहिए ना सबको।
4: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: लक्ष्मी का घर पर वास हो।
1: यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
4: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस। आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
8: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
10: Inefficient,
11: very complex,
12: clumsy or
13: confusion ही confusion.
14: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
15: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
16: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
17: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है. दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस. फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को.
18: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: एडजस्टमेंट और सप्रेशन के बीच का फर्क क्या है और हम अक्सर गलत चॉइस क्यों कर लेते हैं, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक तरह से तो फिर कह सकते हैं ना कि जॉइंट फैमिली कहीं ना कहीं समझौते का परिकाष्ठा आप कह सकते हैं, बिकॉज फैमिली में क्या होता है, ड्रामा होता है, अलग लोग होते हैं, कुछ पसंद होते हैं, कुछ नापसंद होते हैं, सबकी महत्वाकांक्षाएं अलग होती हैं, सबके जो करियर होते हैं, जो पाथ होते हैं, जीवन जीने का तरीका होता है, खान पान होता है, सब अलग होता है। तो ये इतने एडजस्टमेंट से चलता है तभी ये चल पाती गाड़ी।
4: एब्सोल्युटली, लेकिन वो एडजस्टमेंट में आपको नेचुरली आप कर रहे हैं ये आप सप्रेस कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। सब कुछ तो आपके अनुसार हो नहीं सकता ना, वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू डांस टू योर ट्यून्स। घर में भी जितने लोग हैं उनकी अपनी इच्छाएं हैं, अपने एम्बिशंस हैं, अपनी डिजायर्स हैं। एक है कि आप हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, और एक है कि आपको ही उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। देखो, जैसे ही आप गिविंग मोड में चले जाते हैं, यू आर एम्पावरिंग द फैमिली। जैसे ही आपका हाथ ऐसा होता है कि मुझे चाहिए, तो फिर आप वो गिनने लग जाते हैं, मैंने कितना सैक्रिफाइस किया, मैंने कितना एडजस्ट किया। आपने अगर कोई सैक्रिफाइस किया भी, फॉर एग्जांपल, कई लोग कहते हैं मैंने आपके लिए कंट्री छोड़ा, मैंने आपके लिए देश छोड़ा, मैंने आपके लिए जॉब छोड़ा। हम लोग कई चीजें छोड़ते हैं, अब उसका आप समझौता कहें, एडजस्टमेंट कहें, सैक्रिफाइस कहें, पर अपने साथ बैठ करके कॉन्वर्सेशन करें, मैंने छोड़ा पर क्यों छोड़ा, मैंने डिसाइड किया था ना वो छोड़ना, इसलिए किया था क्योंकि उसमें उनका कोई भला था या कोई फायदा था या उनको कोई बेनिफिट था, और उनकी खुशी में
3: मेरी खुशी
4: थी,
3: इसलिए
4: मैंने ये अपनी खुशी के लिए किया। भले हम वो डाल उनके ऊपर देते हैं,
3: दरअसल हमने अपने लिए किया,
4: हमने किया अपने लिए। जिसको ये पता होता है, सो मेनी वुमेन हु चूज नॉट टू वर्क, देयर सो मेनी वुमेन हु चूज कि हम प्राइमरी केयर टेकर हैं इस समय पर, वो अपने जॉब को गिव अप करते हैं, कुछ भी, कहीं खुशी से करते हैं, कहीं कहते हैं मुझे कोई रिग्रेट ही नहीं है, मैंने बहुत चूज किया, आई चूज टू डू दिस। सेम चीज की होती है दोनों ने, किसी को लगता है मैंने बहुत त्याग किया, मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया, और किसी को लगता नहीं, आई चोज दिस, मैंने तो ये अपनी मर्जी से किया है, वो डिपेंड करता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Braj Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस की कमी रिश्तों को कैसे कमजोर करती है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कुछ परिवार में ऐसे होते हैं ना, जो थोड़े से बुजुर्ग होते हैं वो बहुत पास्ट में रहते हैं, वो यादों में अपने सफर कर रहे होते हैं और वो कहते हैं ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि पहले ऐसा होता था, लेकिन जिंदगी जो है वो बढ़ गई है, आगे बढ़ गई है, सदी

0: बदल गई है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। और जरूरी नहीं है कि जिस तरह से 40 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले गाड़ी चलती थी, आज भी वैसे चले। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए?
1: ये होता है, क्योंकि कई बार जो चेंज है वो शायद देख भी नहीं रहे क्या चेंज होता है, अपने बबल में होते हैं ना, कई बार उनको पता भी नहीं चलता कि बाहर कितना फास्ट चेंज हो रहा है। इसमें एक बहुत कम्युनिकेशन की जरूरत है। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, हम करते नहीं है, नाराजगी हो जाती है। ये समझना कि वो क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट जेनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये बातें ही नहीं समझ में आती। उनका हमारा जीवन जीने का तरीका, खान पान, उठना सोना समझ में ही नहीं आता। तो पहले मैं भी अंडरस्टैंड करूं कि वो नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके जीवन और हमारे जीवन बहुत
0: अलग है,
1: अलग रही है। यू नो द मोमेंट यू एक्सेप्ट द पर्सन, आपसे एक वाइब्रेशन उन तक जाता है रिस्पेक्ट का।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति रिश्तों में एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट चाहिए, इसको गांठ बांध ले। बातों में बाद में जाए, पहले व्यक्ति, चाहे वो आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनको जब हम ये कहते हैं ना कि आप अपने नजरिए से बिल्कुल ठीक हो, आप ठीक हो, यू आर राइट, किसी को ये नहीं सुनना यू आर रॉन्ग। ये है छोटी सी बात, पर जैसे आप किसी को कहते हो आप गलत हो, चाहे बड़े छोटों को कहते हैं आप गलत हो या छोटे बड़ों को कहते हैं आप गलत हो, वहीं पर ही दोनों सुनना बंद कर देते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
1: क्योंकि रिजेक्शन आ गई ना, यू रिजेक्टेड द पर्सन। तो पहले एक्सेप्ट करें, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर अपनी बात कहें, और अपनी बात कह करके गिव देम सम टाइम टू अब्सॉर्ब, गिव देम सम टाइम टू अंडरस्टैंड। टाइम लगेगा इस चीज के अंदर, जो चीज उन्होंने कभी देखी नहीं है, खाई नहीं है, करी नहीं है, आप सोचे वो एकदम उसको एक्सेप्ट कर ले, होता तो नहीं है ऐसा।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आपका घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
2: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
1: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
3: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इमिन्सको इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक रीड रोड इजलिन।
7: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlboro. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
13: हेलो, नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
14: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
13: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड कुरेटा एवेन्यू।
14: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
13: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
14: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
15: जिंदगी मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
16: वाओ, यही तो लहंगा।
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
16: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
17: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
16: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
18: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
19: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
2: अरे कहना क्या चाहते हो,
19: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
4: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
10: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: रिजिड सोच क्यों हेल्दी रिलेशनशिप्स के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे एक दोस्त है वो ये करने की कोशिश करती है। वो कहती है जब भी मैं परिवार में जब भी मैं अपने घर जाती हूँ पापा के, तो पापा उसके कहते हैं मेरा घर है, यहाँ पे वही रूल्स चलेंगे जो मेरे हैं, तुमको कुछ भी बदलना हो अपने घर जाके बदलना, मेरे घर में कुछ चेंज करने की कोशिश मत करना। तो कभी जब आप देखते हैं सामने वाला इतने मतलब अटके हुए हैं कुछ चीज़ों पे, या बहुत जिद पे अटके हुए हैं या बहुत स्टक हैं, तो फिर कैसे बातचीत आगे बढ़े?
4: इसीलिए तो रिश्ते खराब होते हैं ना। अगर आप बहुत रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते, तो फिर नेचुरली वो रिश्ते खराब होते हैं। उसमें तो दोनों तरफ से है। अगर वो फादर इतने रिजिड हैं तो उनको समझना पड़ेगा कि आपका वो रिश्ता धीरे धीरे खराब होगा, मतलब वो व्यक्ति दूर होना शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति को आने की दिल नहीं होती, बात करने की दिल नहीं होती, क्योंकि उस व्यक्ति का मन कहता है ये मुझे समझते ही नहीं है, तो वो व्यक्ति दूर होगा। और इस व्यक्ति को फिर क्या करना पड़ेगा, ये व्यक्ति अब समझता है कि वो नहीं बदलते, तो फिर आप बहुत ज्यादा रिश्ते को खराब करने की जगह फिर आप यू फाइंड अ मिडिल वे कि जहाँ आप अपने मन में शुभ भावना रखते हैं और जितना आपसे मिला जाता है या जितना आपसे एडजस्ट किया जाता है आप करते हैं। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मन में बिटरनेस नहीं लानी चाहिए।
3: बिल्कुल, मन में बिटरनेस नहीं लानी चाहिए। कुछ दो तीन चीजें उसने मुझसे शेयर की। वो कहती है कि अब मैं 15 साल की बच्ची नहीं रही, अब मैं 40 के ऊपर हूँ। मेरे पापा आज भी एक्सपेक्ट करते हैं कि 11 बजे के अंदर घर आ जाऊँ। तो कहते हैं कि कुछ कुछ चीजें वो, और ऐसा नहीं कि मैं रोज 12 बजे घर आ रही हूँ, कभी कुछ हो गया, लेट हो गया एक्सेट्रा, वो आके दरवाजे पे कह रहे हैं तुमको कितनी बार कहा है कि मेरा घर है, तुम 11 बजे नहीं आ सकते तो बाहर रहा करो। तो वो कहती है कि मुझे कभी कभी लगता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब क्योंकि मेरे पापा हैं, मैं रहना चाहती हूँ, जब शहर में आती हूँ उन्हीं के साथ रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है ये क्या है। तो लड़ सकती नहीं, लड़ने का फायदा नहीं, क्योंकि कहते थे मेरा घर है, गेट आउट मुझे होना नहीं है। तो बड़ी परेशान रहती है वो।
4: इसीलिए तो आपको कह रही हूँ ना कि अगर वो फादर ऐसे बिहेव करेंगे तो ग्रेजुअली वो आना बंद कर देंगे। लेकिन अगर उनको आना है और उनको लगता है कि उनका जो एक्शन है वो बिल्कुल राइट है, कर्म उनका गलत नहीं है, भले उनके फादर को लग रहा है लेकिन उनका कर्म राइट है, और राइट कर्म के बाद भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम गलत करें और कोई हमें रिजेक्ट करे तो अलग बात होती है। मुझे लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और तो भी हमें कोई रिजेक्ट करता है, उस समय सहन शक्ति ये लगती है, सहन शक्ति यहाँ सहन करना पड़ता है कि हम वो कर तो रहे हैं लेकिन फिर भी अपने दिल में और अपने मन में अपने फादर के प्रति बिटरनेस नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अंदर तो यही आता है ना जो आप कह रहे हो, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, वो मुझे समझते क्यों नहीं है। आध्यात्मिकता में हम इसको क्या कहते हैं, वृत्ति, एटीट्यूड। सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है। समझने की बुद्धि हमें मिली है तो हमें समझ में आता है ये व्यवहार सही है ये गलत है, लेकिन उसको वृत्ति में नहीं बिठाना। मैंने अगर आपकी कमी को मैं अपनी वृत्ति में बिठाती हूँ तो मेला कौन होगा?
3: मैं।
4: क्योंकि बार बार जब आप मेरे सामने आएंगे ना तो वही संकल्प उठेगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो अंदर से डिप्लीट मैं हो रहा हूँ। अपने अंदर को साफ रखना, हरेक की विशेषता को रखना, हरेक के प्रति गुड विशेस रखना, यू नॉट डूइंग इट फॉर एनीबडी,
3: अपने लिए कर रहे हैं।
4: सो इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि आप गलत हैं, आई ट्राई टू होल्ड ऑन व्हाट इज बेस्ट इन यू इन माय हार्ट। अपने दिल के अंदर फिर भी हम वही रखना चाहेंगे जो आपकी क्वालिटी है। कमजोरी का पता है पर उसको अंदर समाये नहीं, अपने चित्त को साफ रखें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
2: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
1: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
3: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
8: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
7: Wait, they can see us on Sunday?
8: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
12: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
13: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
12: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
14: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
15: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
16: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
17: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
16: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
9: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Namaskar. आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विशाल सेठिया और ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया के साथ। आइए अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर सौरव रॉय 12-7 से लिखते हैं कि कभी कभी दिल इतना भारी हो जाता है कि लगता है सब छोड़कर हार मान लूं। समझ नहीं आता क्यों मन में ख्याल आता है कि सब कुछ खत्म कर दूं। जब जिंदगी ही मायूस लगने लगे तो फिर जीने का मतलब क्या ही रह जाता है।
3: सी, अगर आप सब कुछ खत्म कर देंगे, जो कईयों को सवाल आता है, तो उनको लगता है उनका दुख खत्म हो जाएगा। पर उनका शरीर खत्म होगा। शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है वो खत्म होगा, लेकिन जो दुख सुख अनुभव कर रही है वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, वो सोल है। तो सोल को फिर जाकर के दूसरा कॉस्ट्यूम लेना है, और जो उसका कार्मिक अकाउंट है वो उसको सेटल करना ही पड़ेगा। उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप इस दुनिया के किसी भी चैलेंज से भागने की कोशिश कर सकते हैं, आप कार्मिक अकाउंट से नहीं भाग सकते। वो किसी न किसी रूप में आपके पास आना ही है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दीज काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्टेप्स, फायदा नहीं है उसमें कुछ। अगर आप ट्रूथ को जाने, आप नहीं बच सकते। और ही कई बार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, अगर आप अपने समय पर शरीर नहीं छोड़ते तो नेक्स्ट जो सोल को जो नया कॉस्ट्यूम लेना है वो भी रेडी नहीं होता। तो जिसको हम कहते हैं भटकना, थोड़ा समय भटकना पड़ता है, आत्मा को भटक रही है, दैट इज ओनली बिकॉज आपके पास सटल बॉडी है पर आपके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। इट इज वेरी पेनफुल। इसलिए ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने की जगह आप कोई ऐसी जगह पर जाए जहां से आपको स्ट्रेंथ मिले। स्पिरिचुअलिटी इज अ क्रच फॉर वीक कहते हैं, पर वो सच्चाई भी तो है ना। अगर आप वीक फील कर रहे हैं, जैसे अगर कोई वीक बॉडी से वीक होता है तो वो बैसाखी का सहारा लेता है, वो स्टिक का सहारा लेता है। क्यों? कि वो धीरे धीरे उस सहारे से इंडिपेंडेंट हो जाए, डिपेंडेंट नहीं हो जाए। कई बार सहारे चाहिए होते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है। तो आप भी कोई ऐसा सहारा, कोई ऐसा गाइड, कोई ऐसा राजयोगा टीचर, कोई मेडिटेशन टीचर, 3 महीने अपने को दीजिए। कुछ कीजिए, तो कुछ एफर्ट तो डालें। तो वही जो आपका मन इतना मायूस है, उसी मन को हिम्मत और उमंग उत्साह आ जाता है। एंड सो मेनी टाइम्स व्हेन आई मीट द स्टूडेंट्स, जब हम मेडिटेशन कोर्स कराते हैं, बहुत बहुत डिफिकल्ट चैलेंजिंग पीरियड से वो आते हैं, और 3 महीने के बाद मैं कई बार उनको पूछती हूँ कि अभी थोड़ा बेटर है, सब ठीक है। सो समटाइम्स यू नो उनका आंसर इतना सुंदर होता है कि सिस्टर, बाहर तो कुछ ठीक नहीं है लेकिन हम ठीक है।
2: वाह, क्या बात।
3: तो वो भी अपने आप में सफिशिएंट होता है कि अभी वो सेम चैलेंज उनके ऊपर उतना इन्फ्लुएंस ही नहीं डाल रहा।
2: बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो सौरव, आई होप आप इसे जरूर प्रेरणा लें, और खत्म करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि खत्म कुछ नहीं होता मेरे भाई। जिंदगी है तो चलती रहेगी, आपकी जो सोल और जर्नी है वो आगे भी जाएगी। तो प्लीज आप सिस्टर श्रेया की बात जरूर सुने, कोशिश करें एक सहारा लेने की, शायद इससे आपकी परेशानी जो है वो कम हो जाए।
3: 100% होगी, कोशिश भी नहीं करना ही है, बिल्कुल भी वो नेगेटिव थॉट में जाना ही नहीं है, और हो जाएगा। एवरीबॉडी इज देयर।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
2: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
1: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
2: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
3: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
6: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
7: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
6: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
8: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID
9: 2108069।
10: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
11: अरे कहना क्या चाहते हो,
10: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
12: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
13: चलो इस बार दिवाली को नए तरीके से मनाते हैं, पटाखों के बदले मिठाइयों से सजाते हैं, फुलझड़ी की जगह काजू कतली और अनार की जगह रस मलाई का चलन शुरू करते हैं, रसगुल्ले को चरखी की जगह निपटाते हैं और खुशबू पटाखों की नहीं मीठे की फैलाते हैं। जरा दिखा दे दुनिया को कि स्वाद से कैसे दिवाली मनाते हैं। ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
14: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
15: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
16: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विशाल सेठिया और ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया के साथ। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का, उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
17: सिस्टर श्रेया, सुरेखा जी हैं, वो लिखती हैं कि मैं अकेली रहने वाली व्यक्ति हूँ, रिटायर्ड हूँ। पिछले कई सालों से मेरे ऊपर वाले फ्लैट में अलग अलग लोग मुझे लगातार परेशान करते आ रहे हैं, तेज आवाजें, पीछा करना, निगरानी जैसा व्यवहार, और समाज की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिलता है। मैंने पुलिस को भी शिकायत की है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इस मानसिक और आध्यात्मिक तनाव से मैं कैसे बाहर निकलूं?
18: See, out of my experience, जब हम ये कहते हैं ना कि ये भी मेरे साथ गलत कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है, सब मेरे अगेंस्ट हैं। जब सब के लिए हम कहते हैं ना अगेंस्ट है, तो कई बार प्रॉब्लम वहां नहीं होती। तब कई बार थोड़ा सा रुक के ये भी देखना चाहिए कि कई बार प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है। ऐसा होता है ना, हमने काला चश्मा पहना तो हमको सब काला दिखाई देता है। एकाध के लिए आप कहें कि वो मेरे साथ सही व्यवहार नहीं करता, तो समझ सकते हैं कि वो एक व्यक्ति शायद ठीक नहीं हो। पर आप कहते हैं कोई भी ठीक नहीं है, जिनके साथ हम रहते हैं वो भी ठीक नहीं है, जिनके साथ काम करते हैं वो भी ठीक नहीं है, समाज भी ठीक नहीं है, जो ऊपर रहते हैं वो भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें ऐसा लगता है कि शायद सब ठीक है, पर हम, हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है और हमें सब गलत दिखाई दे रहे हैं। और उसका कारण ये भी होता है कि जितने हम खाली होते हैं उतनी फॉल्ट्स हमें नजर आती है। हम जितना अंदर से खाली हैं, दुखी हैं, हमें संसार बहुत ऐसा डार्क दिखाई देता है, और जब हम भरे हुए होते हैं तो वही संसार हमें ठीक दिखाई देता है।
17: तो अभी इनके लिए आपकी क्या राय है, वो क्या करें?
18: अपनी सोच को थोड़ा बदलना चाहिए, औरों की कमियां देखने की जगह विशेषताएं देखनी चाहिए, अपने को एम्पावर करने के लिए कुछ ना कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, उनको अपनी हीलिंग करनी चाहिए।
17: और आप क्या इनको भी किसी की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि शायद ये सारी चीजें वो कर रही हैं लेकिन उनको इससे कोई फायदा नहीं हो रहा।
18: बिना मदद के तो हो ही नहीं सकता। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बिना मदद के बहुत मुश्किल है। आप चाहे नहीं भी फिजिकली अगर कुछ विजिट करते तो भी अगर आप किसी साधन से भी थोड़ा सुनते हैं, वैसे तो फिजिकली इन चीजों में, बिकॉज दिस इज नॉट इन्फॉर्मेटिव ना, मेडिटेशन इज एन एक्सपीरियंस। अगर कोई चीज केवल इन्फॉर्मेटिव होती है, एजुकेशन के लिए होती है, आप साधन से भी कर सकते हैं। मेडिटेशन आदि आप बहुत साधन से नहीं कर सकते क्योंकि उसमें प्लेस का बहुत इम्पैक्ट होता है, कराने वाले व्यक्ति का बहुत इम्पैक्ट होता है, एनवायरनमेंट का बहुत इम्पैक्ट होता है। जब हम किसी ऐसी चीज का सपोर्ट लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे सोचने का तरीका, देखने का तरीका, हमारी दृष्टि, हमारी स्मृति, हमारी वृत्ति, एटीट्यूड, एवरीथिंग स्टार्ट्स टू चेंज। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, पर हम वेट करते हैं कि विश्व परिवर्तन हो, तो वो नहीं हो सकता। स्व परिवर्तन से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन।
15: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

इतना पसंद था ये गाना, इनफैक्ट अभी भी है, बट मेरे दो भाई यशराज मुखाटे एंड केतन सिंह हैव रूइंड इट फॉर मी नाउ। दैट वाज बेशरम रंग, इस हफ्ते गाना नंबर 7 पर। ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दिस ईयर, पठान के इस गाने ने पागलपन मचाया। इट स्टेड ऑन नंबर 1 फॉर सो मेनी वीक्स, लेकिन अब नई फिल्मों के आते खिसक रहा है थोड़ा थोड़ा। दिस वीक इट्स ऑन नंबर 7 फ्रॉम नंबर 4 लास्ट वीक। एंड माई नेम इज सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची डॉट 20। एंड ये जो दो दोस्त है मेरे, केतन जो खुद एक रेडियो जॉकी रह चुका है एंड यशराज मुखाटे, इन दोनों ने दिमाग में अब ये नया वर्जन डाल दिया है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था कि बेशरम रंग की जो लिखावट है वो थोड़ी ओल्ड स्कूल है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, एंड दीज टू डिसाइडेड दैट ये एक 60 के दशक का वर्जन बनाएंगे। एंड अगर रफी साहब इस गाने को गाते तो शायद ये कुछ ऐसा सुनाई देता।

आई हेट इट सो मच दैट आई एक्चुअली लव इट. मतलब हंसी भी आ रही है और नाज भी है इन दोनों भाइयों पर. खैर आगे बढ़ना है और गाना नंबर 6 हमारा इंतजार कर रहा है. इट्स अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. इट्स फ्रॉम मिस्टर पंजाबी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सेल्फी. गाने का नाम है कुड़िए नी तेरी. इट्स मेकिंग इट्स डेब्यू हियर ऑन नंबर 6 ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन. नंबर 6.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नबीज वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा। इसमें से कौन से काटना है
2: सर?
3: एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
2: टाइम कितना है
3: सर? डेढ़ से दो मिनट।
2: पीछे हो गया
3: फिर कटेगा कैसे?
2: भारी सामान
3: तो नहीं है सर।
2: रंग बता।
3: एक लाल एक हरा।
2: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
3: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली। लेकिन सिचुएशन है।
2: आसपास कोई भी नहीं है।
3: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
2: हिल नहीं रहे। एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
2: फटना नहीं चाहिए। आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
3: ठीक है।
2: हरा काट के देख। धीरे से।
3: वन टू थ्री। कंग्रेचुलेशंस।
2: ताली बज रही है? कौन है?
3: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना। मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
2: शोरूम का रिबन काट रहा
3: है।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RawJewels.com.
4: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
5: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
4: Wait, they can see us on Sunday?
5: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: क्या हर हफ्ते हेल्थ इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है और मेडिकेयर मेडिकेड सोशल सिक्योरिटी को काटने का प्लान है? हम आम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं। इसको सिर्फ एक चीज बदल सकता है।

0: आपका वोट, आपके फ्यूचर में आपकी आवाज है आपका वोट। इस नवंबर जरूर वोट करें।
1: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
6: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
5: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
7: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
13: प्री बुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर। कंडीशंस अप्लाई।

0: ताज्जुब नहीं होगा अगर ये गाना नंबर वन तक जाए, बिकॉज ऑल्सो इट इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द चार्ट्स, तेरे प्यार में बाय अरिजीत सिंह फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार। बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर दोस जिनको फिल्मों का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये फिल्म तू छोटी मैं मक्कार डायरेक्ट की है मिस्टर लव रंजन ने। एंड लव ने जो चार फिल्म में इससे पहले डायरेक्ट की हैं, ऑल ऑफ देम फीचर्ड हिज फेवरेट पेयर कार्तिक आर्यन एंड नुसरत भरूचा। अब कार्तिक तो नेक्स्ट लेवल स्टार बन गया है एंड सो इज नुसरत। सो लव ऑल्सो डिसाइडेड कि अब यार मैं बड़ी फिल्म बनाऊंगा एंड तब तू झूठी मैं मक्कार हैपेंड। मिर्ची टॉप 20 पे आई एम सुरेन एंड द वन थिंग दैट इज रियली अमेजिंग इज द न्यू पेयरिंग ऑफ द टू कपूर्स रणबीर एंड श्रद्धा। दोनों फिल्म फैमिली से हैं, दोनों फैमिली फ्रेंड्स, दोनों के डैडीज अच्छे दोस्त, बट अब तक दोनों ने साथ में काम नहीं किया था एंड द बेस्ट पार्ट they both actually look good together. But dono ko ek dusre ke sath film karna kya raas aaya, jaan lete hain.
1: Everybody knows that you know Ranbir is such a fabulous actor and I've always admired his work and ye experience karne ke liye on set with him bahut maza aaya and he is really superb.
2: So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born because our parents are friendly and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication and fire, you know, to give her best. I think it is Love's genius that she casted both of us together. So thank you, Love.
3: Thank you.
2: I give you credit for this also.
0: I really like their chemistry and I hope it does work some magic. And kya hai ki Pritam da ne jo gana banaya hai, uska zone, uski vibe ek aur gaane se kaafi milti julti hai. But usse pehle आपको बता दूं इस हफ्ते का गाना नंबर 3 कौन सा है।
4: तू मैं जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए।
0: अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो गाना है तेरे प्यार में, इट डज साउंड लाइक अनदर सॉन्ग दैट आई रियली लव। जो फीलिंग, जो वाइब थी लव आजकल 2 के गाने में, आई फाउंड इट हियर एज वेल एंड दैट इज व्हाई मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक है हां मैं गलत, वंस अगेन बाय अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा ऑन द मिर्ची डॉट 20 विद मी सुरेन।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची वीरानी ज्वेलर्स
2: पिरानी रूलर्स सो मिर्ची 9 लाख का हार चल रहा है. अगली कंटेस्टेंट जो है वो मेरे साथ लाइन पर है. लेट्स फाइंड आउट हु दैट इज. हेलो.
3: हाय.
2: हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: शीतल.
2: हाय शीतल, हाउ आर यू?
3: गुड, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, थैंक यू सो मच. हैप्पी नवरात्रि टू यू.
3: सेम टू यू.
2: ऑलराइट शीतल, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ और उसका जवाब देने पर डिपेंड करेगा कि आप अगले राउंड में जाते हैं कि नहीं जाते. ऑलराइट, मेरा सवाल अगले राउंड के लिए आपसे है कि कौन सी ऐसी इंडिया की सिटी है जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है? फटाफट से आंसर बताइए.
3: सिटी ऑफ द ड्रीम्स, बॉम्बे.
2: बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर. एंड बॉम्बे यानी कि मुंबई इज ऑल्सो द सिटी ऑफ ड्रीम्स इन इंडिया. थैंक यू सो मच शीतल फॉर पार्टिसिपेटिंग. कंग्रेचुलेशंस, आप अगले राउंड में पहुंच गए हैं.
1: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स.
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयां. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
5: ए हेलो, नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स.
1: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा. मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन.
5: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड कुरेटा एवेन्यू.
1: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सूरों पर 16वीं को.
5: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री.
1: रेडियो पार्टनर मिर्ची.
4: नवरात एक स्पिरिट
6: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
4: रमो गरबा डेली 11 થી 19 ઓક્ટોબર સાંજે 7 કલાક થી.
6: તારીખ 18મી ના રોજ 8મ યજ્ઞ, 19મી એ 9મ યજ્ઞ અને 25મી એ શરદ પૂર્ણિમા ગરબા ને મિસ ના કરતા તો ફેમિલી સાથે જોડાઓ અને અનુભવ ડિવિનિટી. વિઝિટ ગાયત્રી સેન્ટર .org ટુડે.
7: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
8: अरे कहना क्या चाहते हो?
7: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज. हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
9: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22-carat gold एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट VIRANIJewelers.com.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर.
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
13: रिश्ते

0: विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
1: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
2: दिस फेस्टिव सीजन कलॉल ऑफ न्यू जर्सी प्रेजेंट्स टू मेस्मराइजिंग नाइट्स।
3: अक्टूबर 17th, द वॉइस बिहाइंड द फेमस बिल्लो रानी रिचा शर्मा।
2: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalol.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
4: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.

0: इस गाने का ओरिजिनल 12 साल पहले ही तो आया था, इतनी जल्दी इतना पुराना थोड़ी ना हो सकता है कि इसका नया वर्जन निकालना पड़ जाए।
1: सुरेन के साथ only on Mirchi, it's hot.
0: प्रीतम दा को खुद ही के गाने रिहैश करने पड़ रहे हैं। मे बी ये मार्केट की डिमांड है, बट I don't think प्रीतम दा खुद ये करना चाहते होंगे। मिर्ची टॉप 20 पे इट्स मी सुरेन एंड कैरेक्टर ढीला है 2.0 इज द ब्रांड न्यू एंट्री ऑन द चार्ट्स एंड ये सीधा आया है नंबर 2 पर एंड दैट इज अनबिलीवेबल। और इस गाने की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कार्तिक आर्यन की खुद की पॉपुलैरिटी, क्योंकि आजकल कार्तिक जो भी करता है वो सोना बन जाता है। एंड प्रीतम दा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेनी हिट सॉन्ग्स इन कार्तिक्स 10-year old करियर, और ये बात कार्तिक खुद एक्नॉलेज करता है।
2: प्रीतम दा का जो म्यूजिक हमेशा रहा है, बीट एनी फिल्म ऑफ माइन, पिछले जो बुलबुलेट 2 आई थी या फ्रेडी भी आई थी, उन दोनों के भी गाने काफी चले थे, फ्रॉम द टाइटल ट्रैक टू काला जादू लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो अभी ये एक एक करके गाने और खुलने वाले हैं। इसमें मुंडा सोना हूँ अभी काफी चल रहा है, एंड रिसेंटली मेरे सवाल का जो रोमांटिक ट्रैक है, अगेन इट्स ऑन मतलब मैं ट्रेंडिंग लिस्ट बेसिकली, सो दीज आर ऑल वर्किंग एंड सो आई हैव बीन रियली लकी विद म्यूजिक। एंड म्यूजिक काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एस्पेक्ट होता है एक एक्टर के करियर को, एक अलग सा उसको एक हीरोइज्म दर्शाने में या फिर उसको एक उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। सो आई हैव बीन बीट सोनू टीटू का म्यूजिक, बीट भूल भुलैया का म्यूजिक और बीट एनी अदर फिल्म ऑफ माइंड, ये म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लुका छुपी। तो आई थिंक ये फिल्म में भी वही हो रहा है शहजादा में, एंड थिएटर्स में खींचती है ऑडियंस को ये, तो वो बहुत जरूरी है।
0: भाई को तो प्रीतम दा का साथ भी मिल गया है, विच मीन्स ये एक सुपरस्टार होने का सबसे बड़ा सबूत है। रणबीर से पूछ के देखो, वो भी यही बताएगा। ऑलराइट, सो नाउ द नंबर 1 सॉन्ग मिर्ची टॉप 20 पे, वी हैव अ न्यू किंग। जिस गाने ने पिछले हफ्ते डेब्यू किया नंबर 3 पे, इस हफ्ते आ गया है सीधा नंबर 1 पे, राइडिंग द नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस, तनिष्क बागची की एक और उपज, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फ्रॉम अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमीज अपकमिंग फिल्म सेल्फी। सो बेसिकली दो गाने ऑन द टॉप 2 पोजीशंस जो है पुराने गाने। टॉक्स अबाउट योर टेस्ट मोर देन माइन, चेक इट आउट हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20। आई एम सुरेन,
1: नंबर 1।

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: इंटरेस्टिंगली उदित जी ने अपने हिस्से तो फिर गाए हैं बट अभिजीत दा के पुराने हिस्से रिटेन किए गए हैं। मे बी ना कर दी उन्होंने, मे बी ही डिडंट केयर। इस हफ्ते का नंबर वन गाना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन इस शो मिर्ची डॉट 20 का खिलाड़ी अब आपको कहता है बाय बाय। आई बी बैक सेम प्लेस सेम चैनल सेम टाइम। मेरे डीएम्स में स्लाइड करने के लिए सुरेन सुरेन ऑफिशियल इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सुरेन ओवर एंड आउट।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
2: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: The mortgage industry has changed over the years, par hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
8: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
7: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
8: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
14: नौ नौ लखा वाला हार पहना है चुराएल।
15: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
16: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
15: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
9: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: Mirchi. Isca bana, usca bana, saca bana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में एक सेकंड होल्ड करिए अच्छा मुझे बताइए शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने बता दिया हाँ बेटा कैसे हो
1: तुम कौन हो
2: वही चीज मेमोरी भी है ना लॉस बेटा तुम आओगे मेरे पास यहाँ आ जाओ ठीक है
1: क्यों आ जाऊं
2: अग्रेशन क्यों आ जाऊं ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं वो सब दे देंगे अच्छा एक काम करो मैं आ जाऊं तुम्हारे पास बेटा मेरे पास आओ आप मेरे पास आ जाओ
1: क्यों मैं तुम्हारे पास कौन हो तुम
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी देनी है अंकल
1: अरे किसका अंकल
2: बेटा तुम्हारा अंकल
1: ये कब आ गया
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा कह रहा ये कब आ गया फोन काट दिया
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना
1: कौन सा इलाज कराना है लेवो को इलाज नहीं कराना फोन रखो तुम
2: वही लेवल 7
1: अरे तुमको बात किससे करनी है तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ
2: अग्रेशन
1: कौन हो तुम मेरे
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे
1: अरे तू है कौन तू ये बता
2: ना ये है 9th लेवल अगर अभी नहीं आया ना गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे
1: ऐसा है अपनी गोली डाल दो अपनी ठीक है
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है देखो बेटा आना पड़ेगा अंकल ने कहा है ना फिर
1: ऐसा है इंजेक्शन लगाना है ना तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ
2: ओह माय गॉड लेवल 15 वो सबके
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो दिवाली की ढेरों बधाइयाँ सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com
4: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं आरके ज्वेल्स चलिए इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस इट्स 2 AM हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियंस ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे व्हाट डू वी डू
7: डोंट वरी आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 days पीडियाट्रिक्स दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस नाउ वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग
6: वेट दे कैन सी अस ऑन संडे
7: वी आर ओपन 7 days अ वीक इंक्लूडिंग संडे द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स ऑफरिंग सेम डे सिक केयर वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंडिंग areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स
11: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन
12: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड कुरेटा एवेन्यू
11: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को
12: एंड द बेस्ट पार्ट इट्स कम्प्लीटली फ्री
11: रेडियो पार्टनर मिर्ची
13: चुराने का जरूरत नहीं मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स
14: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है
13: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार 9 नवरात्रि नाइट्स 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244 दैट्स 9033 मिर्ची और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
8: On Oak Tree Road, festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit ViraniJewelers.com.
15: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
16: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
15: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
17: Isse apni jeb mein rakh le, Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
15: Moral of the story? Number one, sirf ek hi hota hai. Ek hi hota hai. जैसे

यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी बिल देख के पसीना छूट रहा है? गैस प्राइसेस की वजह से ट्रैवल ही बंद कर दिया है? अरे ईरान के साथ हम क्यों लड़ रहे हैं भाई? कनाडा कब से हमारा दुश्मन हो गया? ट्रंप और रिपब्लिकन कांग्रेस को तो आम आदमी की चिंता है ही नहीं, बस अपने अमीर दोस्तों को टैक्स कट पे टैक्स कट दिए जा रहे हैं। और हर दिन वीजा, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप को लेके कुछ नया रूल। इस नवंबर सारे डेमोक्रेट्स को वोट दें ताकि अगले दो साल पिछले दो साल की तरह ना निकले। वोट जरूर करें।
2: वेट फॉर बाय DesiBlue, DesiBlue.org, नॉट ऑथराइज्ड बाय एनी कैंडिडेट और कैंडिडेट्स कमिटी।
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
5: प्री बुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर। कंडीशंस अप्लाई।
6: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
11: Oh, no!
12: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
13: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
14: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
13: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
15: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट VIRANIJewelers.com।
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का

0: न्यूज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
3: मैत्री ब्रिंग यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
4: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org।
5: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail Gold Rift October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.

0: ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
1: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
2: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
1: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
6: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
7: अरे कहना क्या चाहते हो,
6: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
1: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानी ज्वेलर्स.com।

0: popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
6: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
7: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
6: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
8: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
9: चुराने का जरूरत नहीं. मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
10: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
9: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
11: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viraniejewelers.com.
0: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
12: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
13: कभी कभी लगता है सिर्फ मिर्ची पर हिट गाना है. हिट गाने
14: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: હું તમને બે દુકાનના ઓપ્શન્સ આપું. એક તમારા ઘરના નજીક છે, ત્યાં બધો જ સામાન મળે છે, જે માંગો એ મળે. પણ ત્યાંનો જે દુકાનદાર છે એ બહુ જ રૂઢ છે. એને કોઈ પણ સવાલ પૂછો, કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછો, કોઈ વસ્તુ બદલાવવા માટે જાઓ તો એ ચીડાઈને જવાબ આપે કે ના બેન, આવું ના થાય, આવું તો કઈ હોતું હોય. હવે એક વખત વેચ્યું વેચ્યું આવે. અને બીજી દુકાન તમારા ઘરથી દૂર છે, ત્યાં પણ બધી જ વસ્તુઓ મળે છે, પણ ત્યાંનો જે વ્યક્તિ છે, ત્યાંનો જે માલિક છે, સેલ્સ પર્સન છે, એની બોલી બહુ મીઠી છે. તમે જાઓ છો તો ચા પાણીનું પૂછે છે, તમને એવું કહે છે કે અરે આવો આવો, કેમ છો, થાકીને આવ્યા છો, શું લેશો. તમે જો 100 વસ્તુઓ ખોલાવડાયા પછી પણ ખરીદી ના કરો તો એ અકળાય નહીં. તમને એવો જ જવાબ આપે કે અરે અરે વાંધો નહીં, કદાચ મારી પાસે સ્ટોક ઓછો હશે, નેક્સ્ટ ટાઈમ આવશો ને તો 100% તમારા પસંદની વસ્તુઓ લઈને રાખીશ. બોલો, આ બેમાંથી કઈ જગ્યાએ તમે જવાનું પસંદ કરો? વાત સમજવા જેવી છે કે બંને દુકાન સરખો જ સામાન વેચે છે, સરખી ક્વોલિટીનો સામાન વેચે છે. તમને જે સામાન જોઈએ છે એ પણ બંને જગ્યાએ મળી જ જશે. એક ઘરથી નજીક છે અને બીજી ઘરથી દૂર છે. ફરક વ્યક્તિના વર્તનમાં છે, એના સ્વભાવમાં છે અને એની બોલીમાં છે. તમારી બોલી, તમારી ભાષા, તમારું વર્તન અને તમારી ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન, આના વચ્ચે ખૂબ મોટું કોરિલેશન છે. સમજાવું કેવી રીતે? મોર્ડન ઉઝબેકિસ્તાનમાં એક સિટી છે જેનું નામ છે સમરકંદ. એન્શિયન્ટ સિલ્ક રૂટ જે હતો એના ઉપર ખૂબ વધારે મહત્વતા ધરાવે. ત્યાંના ટ્રેડર્સ, ત્યાંના લોકો બેઝિકલી બિઝનેસમેન, ટ્રેડર્સ છે એ લોકો, અને આજની તારીખમાં પણ ટ્રેડિંગ જ કરે છે. ત્યાંના લોકોનો એક ટ્રેડિશન છે, એક રિવાજ છે કે જ્યારે એમના ત્યાં બાળક જન્મ લે ને તો એની જીભ ઉપર એક મધનું ટપકું મૂકે અને હાથમાં એક ગુંદરનું ટપકું મૂકે. આ વસ્તુ પાછળનો લોજિક શું છે ખબર છે? કે જો તમારી જીભ ઉપર, તમારી જીવવા ઉપર મધ હશે, મીઠી હશે તમારી જીભ, તો સોનાના સિક્કા આવીને હાથમાં ચોંટશે. વાત બહુ જ ટચુકડી છે પણ સમજવા જેવી છે. યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી, હું છું કૃતાર્થ. ઇટ્સ હોટ.
1: મિર્ચી નો લકા હાર, પ્રેઝન્ટેડ બાય વીરાની જ્યુલર્સ.
2: नवरात्रि का माहौल चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब पता करते हैं हमारे साथ और कौन है जो फोन लाइन पर है. हेलो.
3: हाय प्रिसला, गुड मॉर्निंग.
2: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
3: आई एम गुड, दिस इज अनु.
2: हाय अनु, क्या चल रहा है नवरात्रि में?
3: कुछ नहीं, प्रिपरेशन चल रहा है. आई हैव ट्विन गर्ल्स हु आर 2 years and 8 months ओल्ड, सो आई एम प्लानिंग टू ड्रेस देम अप एंड देन लाइक हैव फन, डू सम डांसिंग विद देम.
2: ओह दैट्स सो क्यूट. तो चलिए जल्दी से मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ और आपको फटाफट से बिल्कुल क्विकली आंसर करना है.
3: श्योर.
2: टू मूव टू द नेक्स्ट राउंड, जल्दी से मुझे बताइए विच इंडियन सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी.
3: जयपुर.
2: ऑलराइट, दैट्स द करेक्ट आंसर. जयपुर इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.
1: मिर्ची 9 लाख का हार, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स.
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयाँ. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
6: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
7: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियन्स ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे. व्हाट डू वी डू?
9: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 days पीडियाट्रिक्स. दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस. नाउ वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग.
8: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
9: वी आर ओपन 7 days अ वीक इंक्लूडिंग संडे. द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स, ऑफरिंग सेम डे सिक केयर. वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंडिंग areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
10: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सिया दीवाने.
11: सिर्फ आपको नहीं,
10: मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
11: अरे कहना क्या चाहते हो?
10: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
12: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
13: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
14: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
15: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू।
14: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
15: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
14: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
16: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
17: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी। 92.7 FM रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. It's hot.
18: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
19: Tera kya hoga, Kalya?
20: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
19: Ab mirchi kha.
21: Radio Mirchi. It's hot.

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स।

0: from Hindustan is very big. Recommended Drishyam 3 by Jeetu Raj. 3.5 mirchis ke saath. Aju baby, you rock star. We love you.
1: Saath Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
6: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
5: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
7: No, lakha wala haar pehna hai churail.
8: Churane ka zarurat nahi. Mirchi ke sang ab poore 9 lucky winners ko milega 9 gold chains.
9: Bade bade deshon mein aisi choti choti baatein hoti hain.
8: Kyunki is navratri Virani Jewelers lekar aaya hai Mirchi 9 lakh ka haar. 9 navratri nights, 9 golden opportunities. Har din jeet sakte hain 1 precious gold chain. Participate karne ke liye WhatsApp navratri to 9033647244. That's 9033 Mirchi. Aur taiyar ho jaiye. For your 9 rapid fire questions presented by Virani Jewelers
10: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit ViraniJewelers.com.
11: Listener MA back to back gana sunega.
12: Back to back gana sunega.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
13: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey. And 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: ગુડ મોર્નિંગ, સાંભળી રહ્યા છો મિર્ચી, હું છું કૃતાર્થ. એક પ્રશ્ન કે જે દરેકને જીવનમાં એક વાર તો થયો જ હોય કે ભગવાને મને આપ્યું તો છે ઘણું બધું, પણ બધું જ કેમ નથી આપ્યું. થાય થાય, બધાને આ પ્રશ્ન થાય. એમાં એવું છે ને કે કુદરતે શેરડીને મીઠાશ આપી પણ ફૂલોની સુંદરતા ના આપી. કુદરતે સોનાને કિંમત આપી પણ સુગંધ ના આપી. કુદરતે ચંદનને સુગંધ આપી પણ એને પણ ફૂલ ના આપ્યા. કમળને સુગંધ આપી, સુંદરતા આપી પણ એને જગ્યા કઈ આપી? તો કે કીચડ. કુદરતમાં બધાને બધું મળતું જ નથી. એટલે જો તમને એવું હોય કે હું એકલો જ રહી ગયો અને બાકી બધા જ લઈ ગયા, તો એવું નથી. સબકો સબ કુછ નહીં મિલતા. યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી, ઇટ્સ હોટ. ગુડ મોર્નિંગ. આઈ હોપ કે આ નાનકડી વાતથી તમે દિવસમાં કેવી રીતે ખુશ રહું એ શીખી શકો.
1: हेलो,
2: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब?
1: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं.
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे. अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा कि ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका.
2: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है.
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा.
2: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था. तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना.
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं.
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा हूं.
1: दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे.
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना.
1: टाइम खराब कर रहे हैं.
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई. मेरा
1: पेशाब लूट रहे हो आप. बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: है तो मेरा यूरिन
1: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस.
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा. मेरी चीज है आपके पास.
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा. ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा.
1: भाई जाकर जाकर नहीं कंप्लेंट
2: कर, मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन.
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जाकर नहीं कर,
2: मैं निकलवा लूंगा. ठीक है, और उसको संभाल के रखना. मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत.
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहां पे भी जाना है.
2: मैं देखता हूं मेरा यूरिन कैसे.
1: हां ठीक है, देख ले देख ले.
2: ठीक है भाई.
1: हां ठीक है.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ये पकड़ा.
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयाँ. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
5: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है. दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस. फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
7: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल. कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो. 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम. साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन. विजिट द craftyhands.com और कॉल
8: 732-397-0057. चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड.
9: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
8: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट VIRANIJewelers.com.
11: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
12: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Durga Puja ka celebration ho aur Kolkata ka flavor na ho, aisa kaise?
16: Maitri brings you thak, puja, aarti, bhog, sindoor khela, cultural programs and a delicious dinner. Plus, live music by Mahalakshmi Iyer, Ankita Bhattacharya and Shubh Deep Das Chaudhary.
17: October 24th and 25th, Hammerhold Upper Elementary School, East Brunswick, New Jersey. Register today at maitriusa.org.
18: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
19: Tera kya hoga, Kalya?
20: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
19: अब मिर्ची खा.
21: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ગુડ મોર્નિંગ, સાંભળી રહ્યા છો મિર્ચી, હું છું કૃતાર્થ. આજકાલ મારીને તમારી યાદદાશ્ત મેમરી બહુ જ ઓછી થઈ ગઈ છે, તમને એવું નથી લાગતું? ચલો હું તમને રિયલાઇઝ કરાવડાવું. તમને તમારા દાદાની કઈ વાતો યાદ છે? મારા દાદા હવે મારી સાથે નથી. 2016માં એમનું અવસાન થઈ ગયું. મારા દાદા મારી સાથે નથી. તમને તમારા દાદાની કઈ વાત યાદ છે? મેં બહુ જ ભાર આપ્યો મગજ પર, ત્યારે ચાર વાતો યાદ આવી. દાદાની વાત તો જવા દો. તમને તમારા સ્કૂલથી કયા ફ્રેન્ડ્સ યાદ છે? ફ્રેન્ડ્સના સાથે સંભળાવી શકો એવા કિસ્સા કેટલા યાદ છે? અરે એ બધું તો છોડી દો. ગઈકાલે તમે શું પહેર્યું હતું એ કેટલાને યાદ છે? ગઈકાલનું જોડો આજે શું પહેર્યું છે જોયા વગર તમે કહી શકો? ના, આ મેમરીની પણ વાત નથી, આ તમે કેટલા બેધ્યાન છો એની વાત છે. 99% લોકોને જો હું એમ પોઈન્ટ બ્લેન્ક પૂછું ને કે ગઈકાલે ડિનરમાં શું ખાધું હતું, નથી યાદ? 99% લોકોને જો હું એમ પૂછું કે તમારી ફેવરેટ ડિશ કઈ, તો જવાબ શું આવે ખબર છે? યાદ કરે અને પછી જવાબ આપે. આપણને આપણી ફેવરેટ ડિશ યાદ નથી, ફેવરેટ કલર યાદ કરવો પડે. સગા સંબંધીઓના સાથેની મેમરીઝ એ ટોપ ઓફ ધ માઇન્ડ ના હોય, આવા તો કેવા બિઝી થઈ ગયા છીએ આપણે. આજનો વેકઅપ વિચાર ખાલી એટલો જ છે કે આપણે થોડી મેમરી શાર્પ કરીએ. મેમરી કરતા પણ આ વાત એકચ્યુઅલી મેમરીની નથી, આપણે આપણા જીવનમાં કેટલા અસ્ત વ્યસ્ત છીએ એની વાત છે. હું ને તમે મહેનત શું કામ કરીએ છીએ, પૈસા શું કામ કમાઈએ છીએ કે જેથી કરીને એક સારું જીવન જીવી શકીએ, અને મારા પ્રમાણે સારું જીવન એ મેમરીઝથી બનતું હોય, અને જો મેમરીઝ હોય જ ના તો એવા પૈસાનું શું કામ? હોપફુલી વાત સમજાઈ હોય. યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી, ઇટ્સ હોટ. ગુડ મોર્નિંગ.
1: મિર્ચી નો લંકા હાર, પ્રેઝન્ટેડ બાય વીરાની જ્યુલર્સ.
2: મિર્ચી મોર્નિંગ સર, મેં હું પ્રસલા તમારે સાથ મેં, ઓર અભી મેરે સાથ મેં હમારી અગલી કન્ટેસ્ટન્ટ હે, લેટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ ઉનકા નામ ક્યા હે. હેલો,
3: હાય, માય નેમ ઇઝ યાસ્મિન.
2: હાય યાસ્મિન, વોટ અ બ્યુટીફુલ નેમ.
3: થેન્ક યુ.
2: અભી નવરાત્રિ કી ક્યા તૈયારી ચલ રહી હે?
3: અવર ટાઉન હેઝ અ લોટ ઓફ ઇન્ડિયન પોપ્યુલેશન, સો એવરી યર વી હોસ્ટ અ વેરી નાઇસ ગરબા એન્ડ દિવાળી ફેસ્ટિવલ અરાઉન્ડ ધીસ ટાઈમ, સો યે, એવરીબડીઝ હોમ્સ આર ડેકોરેટેડ એન્ડ ધેર ઇઝ એક્સાઇટમેન્ટ ઇન ધ એર, સો ધેટ્સ વોટ્સ ગોઈંગ ઓન.
2: ઓ ધેટ્સ સ્વીટ. સો ઇન્ડિયા कहां से हुआ?
3: इंडिया, आई एम फ्रॉम बॉम्बे.
2: बॉम्बे, ऑलराइट. तो फटाफट से लेट्स फाइंड आउट बॉम्बे वालों का लक चलता है कि नहीं चलता है.
3: श्योर.
2: विगानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लख का हार, ये कॉन्वर्स चल रहा है. मेरा सवाल यास्मिन से ये है कि इंडिया में कौन सी रिवर को सबसे होली माना जाता है? फटाफट से आंसर बताइए.
3: द गंगा रिवर.
2: द गंगा रिवर इज द करेक्ट आंसर. कंग्रेचुलेशन. और आप अगले राउंड में मूव करते हैं.
1: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स.
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयां. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
5: Oh no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन.
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी. बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
5: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
12: अरे कहना क्या चाहते हो?
5: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244। दैट्स 9033 मिर्ची। और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
13: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
14: प्रीबुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। आल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर। कंडीशंस अप्लाई।
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
8: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
9: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू।
10: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सूरों पर 16वीं को।
11: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
12: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
13: नौ नौ लखा वाला हार पहना है चुराएल।
14: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
15: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
14: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244। दैट्स 9033 मिर्ची। और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
16: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
17: Tera kya hoga kalya?
18: Sardar, maine aapka namak khaya sardar.
17: Ab mirchi kha.
19: Radio Mirchi. It's hot.

औरों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Atri ka rang aur Oak Tree Road ki vibes.
7: Get ready for the biggest open air garba. Mayor John E. McCormick aur Oak Tree Road Indian businesses laaye hain a grand celebration.
8: 15 aur 16 October sham 7 se 10 baje tak at Oak Tree रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू।
7: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सूरों पर 16वीं को।
8: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कंप्लीटली फ्री।
7: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
9: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
10: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
11: अरे कहना क्या चाहते हो?
10: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
12: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
16: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकत कर रहा है?
2: हेलो
3: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
2: मैं
3: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
2: तुम कौन हो?
3: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
2: क्यों आ जाऊं?
3: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
2: तुम्हें बात करनी है?
3: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
2: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हो तुम?
3: वो ये मेमोरी पहचानना भी देनी है अंकल।
2: अरे किसका अंकल?
3: बेटा तुम्हारा अंकल।
2: ये कब आ गया?
3: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
2: हेलो
3: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
2: कौन सा इलाज कराना है? मेरे को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
3: वही लेवल 7।
2: अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
3: अग्रेशन।
2: कौन हो तुम मेरे?
3: डिफेंड कर रहा है अपने आपको कि कौन हो तुम मेरे।
2: अरे तू है कौन, ये बता।
3: ना ये है 9th level, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
2: ऐसा है, अपनी गोली डाल दो अपनी में, ठीक है?
3: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना, फिर
2: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
3: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
5: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
6: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
5: Wait, they can see us on Sunday?
6: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, इज़लिन।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
11: Oh no!
12: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
13: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
14: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
13: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
9: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
15: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
16: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
17: Listener mein back to back gana sunega.
18: Back to back gana sunega.
17: 102.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
2: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
3: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
4: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
9: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
8: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड कुरेटा एवेन्यू।
9: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
8: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
9: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
10: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
11: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
12: अरे कहना क्या चाहते हो?
11: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244। दैट्स 9033 मिर्ची। और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
13: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
14: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। न्यू जर्सी आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
15: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
16: Tera kya hoga, Kalya?
17: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
16: Ab mirchi kha.
18: Radio Mirchi. It's hot.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देव

0: की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रेकमेंडेड दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ अज्जू बेबी यू रॉक स्टार वी लव यू
1: जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो दिवाली की ढेरों बधाइयां सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com
3: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं RK ज्वेल्स चलिए इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स RK ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
5: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
5: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
6: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
5: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
7: Mujhe na lakha manga tere o siya diwane.
8: Sirf aapko nahi, Mirchi ke sang ab pure 9 lucky winners ko milega 9 gold chains.
9: Are kehna kya chahte ho?
8: Kyunki is Navratri Veerani Jewelers lekar aaya hai Mirchi 9 luck ka haar. 9 Navratri nights, 9 golden opportunities. Har din jeet sakte hain. One precious gold chain. Participate karne ke liye WhatsApp Navratri to 9033647244. That's 9033 Mirchi. Aur taiyar ho jaiye for your 9 rapid fire questions presented by Veerani Jewelers.
10: On Oak Tree Road, festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit VeeraniJewelers.com.

0: Mirchi.
1: Escapa la puscapa la sacapana. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर. ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है
3: सर?
4: एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
3: टाइम कितना है
4: सर? डेढ़ से दो मिनट.
3: पीछे हो गया
4: फिर कटेगा कैसे?
3: भारी सामान
4: तो नहीं है सर.
3: रंग बता.
4: एक लाल एक हरा.
3: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
4: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली. लेकिन सिचुएशन है.
3: आसपास कोई भी नहीं है.
4: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
3: हिल नहीं रहे. एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल.
3: फटना नहीं चाहिए, आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है.
4: ठीक है बताइए.
3: हरा काट के देख धीरे से.
4: वन टू थ्री. कंग्रेचुलेशंस.
3: ताली बज रही है. कौन है?
4: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटें. ठीक है,
3: शोरूम का रिबन काट रहा
4: है.
3: हाँ.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयाँ. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए. गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
9: Worried अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
10: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
9: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
11: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो. राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि. राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस. फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को.
12: प्री बुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन. ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. ऑफर ओनली टिल 25th October. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर. कंडीशंस अप्लाई.
13: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
14: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
13: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
14: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: Beta, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ dialogue ही है.
18: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
17: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
19: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
0: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
1: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
0: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
20: नौना लखा वाला हार पहना है चुराएल।
21: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
22: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
21: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
23: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट wiraniejewelers.com।
24: तेरा क्या होगा कालिया?
25: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
24: अब मिर्ची खा।
26: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
4: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
5: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
7: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी बिल देके पसीना छूट रहा है? गैस प्राइसेस की वजह से ट्रैवल ही बंद कर दिया है? अरे ईरान के साथ हम क्यों लड़ रहे हैं भाई? कनाडा कब से हमारा दुश्मन हो गया? ट्रंप और रिपब्लिकन कांग्रेस को तो आम आदमी की चिंता है ही नहीं, बस अपने अमीर दोस्तों को टैक्स कट पे टैक्स कट दिए जा रहे हैं, और हर दिन वीजा, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप को लेके कुछ नया रूल। इस नवंबर सारे डेमोक्रेट्स को वोट दें ताकि अगले दो साल पिछले दो साल की तरह ना निकले। वोट जरूर करें।
8: Paid for by Desi Blue, DesiBlue.org. Not authorized by any candidate or candidates committee.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
12: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
13: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
14: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
15: अरे कहना क्या चाहते हो?
14: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
9: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट VIRANIJewelers.com।
16: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
16: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
17: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
17: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।

0: एंड प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244। दैट्स 9033 मिर्ची। और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
1: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
3: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
4: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
2: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप. अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप गानों की. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है. हमारा 90s एंड 2000s का इंडी पॉप क्लासिक हम फीचर करने वाले हैं. ऑल दिस एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10. 18 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार. संजू राठौड़ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद फरक की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे. 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 10.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: Rosanna Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's Hot.
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
2: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
3: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
2: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
8: नौ नौ लखा वाला हार पहना है चुराएल.
9: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
10: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
9: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
11: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
12: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
13: I am not going to bed with you ever again.
12: But why? What did I do?
13: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
12: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
13: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
12: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
13: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
12: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
14: नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स.
15: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा. मेयर जॉन ई मकोमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन.
14: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू.
15: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को.
14: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री.
15: रेडियो पार्टनर मिर्ची.
16: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
17: Tera kya hoga, Kalya?
18: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
17: Ab, mirchi kha.
19: Radio Mirchi, it's hot.
0: Ghana Indie Top 10
20: Kanika ke saath on Mirchi
21: Number 7

0: बंजारी की आवाज उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है बैरन। 28 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। हर साल अक्टूबर आता है तो ये फीलिंग आती है ये 10 महीने कहाँ निकल गए। रिसेंटली मैंने एक गाना सुना एंड आई रियलाइज कि 10 साल कहाँ निकल गए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. The show is all about the hottest pop music of the week. But recently ek gaane ne mujhe ekdam surprise kar diya when I realized ki is gaane ko, listen to this song, isko 10 saal ho gaye hain.
2: Mere yaar mera pyar hai jahan hai ye nikke nikke shots.
0: गाने का नाम है बाकी बातें पीने बाद बाय अर्जुन कानूंगो एंड बादशाह 10 साल। यस, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पार्टी में अपने दोस्तों के साथ इस गाने पे डांस कर रही थी एंड व्हेन आई रियलाइज कि हाँ इसको 10 साल हो गए, आई वाज लाइक नहीं पॉसिबल ही नहीं है, बट इट इज ट्रू। 10 साल पहले अर्जुन कानूंगो अपने करियर में जो स्टार्ट कर रहे थे एंड टू गेट अ बादशाह कोलैब वाज सच अ ग्रेट डील फॉर हिम एंड इसकी स्टोरी भी बहुत फनी है। बाय 2016 बादशाह वाज बादशाह, ठीक है, एकदम रिकॉग्नाइज्ड रैपर, बट अर्जुन वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट तो ही वांटेड बादशाह टू कोलैबोरेट ऑन दिस सॉन्ग। अर्जुन ने ऐसे ही चांस लिया, बादशाह को ईमेल लिखा दैट मैं ये गाना कर रहा हूँ, आई वुड लव फॉर यू टू रैप ऑन इट। एक दिन कोई रिप्लाई नहीं आया, दो दिन कोई रिप्लाई नहीं आया, तीसरे दिन सीधा अटैचमेंट में एक रैप आता है। बादशाह ने ना कोई मीटिंग करी ना कोई स्टूडियो सेशन, उस अटैचमेंट में जो रैप का पार्ट था वही आज इस गाने में है। ये दोनों पहली बार मिले भी इस गाने के वीडियो शूट पर थे एंड ऑलमोस्ट 10 ईयर्स लेटर दिस सॉन्ग इज स्टिल अ टॉप पार्टी प्लेलिस्ट फेवरेट। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। Throwback to 2016. This is Baki Baate Peene Baad by Arjun Kanungo and Bacha only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Rate.

0: हर थोड़े वक्त के बाद में यही बोलती रहती हूँ कि वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है, एंड दिस सॉन्ग इज द एग्जांपल ऑफ दैट. दैट वाज अर्जुन गानोंगो बादशाह का गाना बाकी बातें पीने बाद. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाला गाना इज अ साई अभ्यंकर सॉन्ग, विवेक के लिरिक्स, गाने का नाम है राधी माँ, दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद मिट्टा रौर का गाना 28 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजिशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है Kanika, enjoy.
1: Number 5.

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's Hot Mirchi 9 lakh ka haar presented by Virani Jewelers
1: मिर्ची मॉर्निंग सर मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में और अभी मेरे साथ में हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं लेट्स फाइंड आउट उनका नाम क्या है हेलो
2: हाय माय नेम इज यास्मिन
1: हाय यास्मिन व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम
2: थैंक यू
1: अभी नवरात्रि की क्या तैयारी चल रही है
2: आवर टाउन हैज अ लॉट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सो एवरी ईयर वी होस्ट अ वेरी नाइस गरबा एंड दिवाली फेस्टिवल अराउंड दिस टाइम सो या एवरीबॉडीज होम्स आर डेकोरेटेड एंड देयर इज एक्साइटमेंट इन द एयर सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन
1: ओह दैट्स स्वीट सो इंडिया में कहां से हुआ
2: इंडिया आई एम फ्रॉम बॉम्बे
1: बॉम्बे ऑलराइट तो फटाफट से लेट्स फाइंड आउट बॉम्बे वालों का लक चलता है कि नहीं चलता है विगानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लक का हाँ ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है मेरा सवाल यास्मिन से ये है कि इंडिया में कौन सी रिवर को सबसे होली माना जाता है फटाफट से आंसर बताइए
2: द गंगा रिवर
1: द गंगा रिवर इज द करेक्ट आंसर कंग्रेचुलेशन और आप अगले राउंड में मूव करती हैं
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो दिवाली की ढेरों बधाइयां सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती प्यार से कूटती मुस्कुराकर पीसती अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी दीप खाओ तो जानो
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं आरके ज्वेल्स चलिए इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
6: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
8: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlborough. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
9: सिर्फ आपको नहीं मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स
10: अरे कहना क्या चाहते हो
9: क्योंकि इस नवरात्रि वी नवरात्रि नाइट्स 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244 दैट्स 9033 मिर्ची और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
11: ऑन ओक ट्री रोड फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी विजिट VIraniJewelers.com
12: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को
13: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो ऐसा कैसे
14: मैत्री ब्रिंग्स यू थाक पूजा आरती भोग सिंदूर खेला कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी
15: अक्टूबर 24th एंड 25th हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल ईस्ट ब्रंसविक न्यू जर्सी रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है
19: अरे माँ अभी भेजता हूँ टैप टैप सेंड है ना इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में
18: अरे वाह इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट
20: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYSE

0: Craziest collab of 2026, Shreya Ghoshal ka gana. Arjun KDS 54, Ron ka gana featuring Shreya Ghoshal. That is Kalyani this week on Gana number 4.
1: Gana Indie Top 10. Kanika ke saath. On Mirchi.
0: Mirchi par, this is the Gana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is at RJ Kanika. It's time for what we call हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग यू फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो.
0: एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है परी हूँ मैं. 1991 में रिलीज हुआ था. सुनीता राव की आवाज, लेस्ली लुइस का म्यूजिक, राजेश जो लिरिक्स. सुनीता राव की एल्बम धुआं का था गाना. एंड आई नो बहुत लोगों को शॉक लगा होगा कि ये 1991 में आया था, पर तब से लेके अब तक इस गाने ने बहुत सारी जनरेशन की लड़कियों को ना एक अलग तरह का स्पेशल फील करवाया है. आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं छोटी थी ये गाना बजता था और मैं सीधा शीशे के सामने भागती थी, खुद को देखती थी, थोड़ा इतराती थी, थोड़ा डांस करो, थोड़े बाल बनाओ, मतलब फुल ऑन मेन कैरेक्टर वाइब. एंड आज नवरात्रि एंड गरबा का सबसे हिट गाना है ये. परी हूँ मैं हर तरफ सुनाई देता है, गरबा नाइट, डांडिया प्लेलिस्ट, बिकॉज इट मेक्स एवरी गर्ल हैव दैट मेन कैरेक्टर मोमेंट. वो वाली फीलिंग होती है ना कि आज मैं मस्त लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ, मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है. आई एम माई ओन सेंटर. एंड आई होप ऑल ऑफ अस फील लाइक दैट एवरी टाइम. बट इस गाने को सुनते हुए तो डेफिनेटली हम ये फील करने वाले हैं. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. सुनीता राव की आवाज, लेस्ली लुइस की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है परी हूँ मैं ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: सुनी तो रहोगी आवाज में, दैट वॉज परी हूँ मैं। बचपन नहीं, अभी भी मैं बस इतरा रही थी, खुद को देख रही थी, बाल बना रही थी, शर्मा रही थी। This song makes you feel so beautiful. Thank you, Sunita Rao, for this iconic, iconic song. At RJ Kanik on Instagram पर आओ, कोई भी गाना from the 90s, 2000s, जो आज भी आपके लिए एक iconic गाना है, मुझसे और अश्काय के साथ आके शेयर करो. We might feature your song next week. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. कृष्णा धंधनियोली वाला का गाना, गाने का नाम है बूम शाका. चार हफ्तों से इस countdown पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जम्प करके बूम शाका इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. You're listening to Gaana Indie Top 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय.
1: Number 3.

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं हम आपके लिए. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जो मेरा हैंडल इज @RJKanika. अपना रिपोर्ट कार्ड किसको पसंद है लेकिन दूसरों की रैंकिंग झांकने में बहुत मजा आता है. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 तक का सफर हम पूरा कर चुके हैं एंड पॉप म्यूजिक के इस हफ्ते के काउंटडाउन में बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक एक क्विक रीकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप. संजू राठौड़ का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. फरक का तारे स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. श्रेया घोषाल का वेरी पिया ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 8. हरियाणवी सेंसेशन बाय बंजारे दिस इज बैरन दिस वीक ऑन गाना नंबर 7. साई अभ्यंकर का राधी माँ वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. देन मिट्टर और का शीशा ऑन गाना नंबर 5.
3: तेरे आगे पीछे लगे सुन दो ना छोरी का हर रंग तेरे.
2: अर्जुन KDS 54 रॉन एंड श्रेया घोषाल का कल्याणी ऑन गाना नंबर 4. कृष्णा एंड धंधा न्योली वाला का बूम शाका ऑन गाना नंबर 3. एंड नाउ द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द काउंटडाउन. गाना नंबर 2 पर जो गाना है वो पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप कर आया है. बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना उन्हीं की आवाज उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है बरसात दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. एंड उसके बाद द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज येट अगेन बाय बादशाह. हितेन का म्यूजिक फीचरिंग शर्वी यादव. गाने का नाम है बैंगर. 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार बैंगर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक हंस मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल मैं इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com। इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो, दिवाली की ढेरों

0: बाज खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलन।
3: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
4: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
3: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
5: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viraniejewelers.com।
6: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
8: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
9: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
8: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
10: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
11: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।

0: क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in...
3: एक नया हफ्ता, एक नया मिर्ची टॉप 20, और जैसे हर हफ्ते होता है, अगले कुछ मिनटों में हम गाने सुनेंगे, कहानियां सुनेंगे, कुछ पुराने गाने नए तरीके से सुनेंगे, और कुछ नए गाने शायद आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते दिल में एक दर्द है, सिर्फ नाना पाटेकर के जाने का दर्द नहीं, उससे भी ज्यादा जो हो सकता था उसके खत्म हो जाने का दर्द। क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में लगता है कि इनको और मिलना चाहिए था, बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था। मेरे लिए नाना पाटेकर, इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी जैसे उन चंद लेजेंडरी एक्टर्स में से थे जिनके सामने ये शब्द स्टार थोड़ा छोटा पड़ जाता है। नाना की एक्टिंग, उनका क्राफ्ट, और हमने उनसे क्या पाया और क्या शायद कभी पा नहीं पाएंगे, इस बारे में मैं आज मिर्ची टॉप 20 पे आपसे एक बात करना चाहता हूं। लेकिन फिलहाल मिर्ची टॉप 20 वही है, मैं भी वही सुरेन सुंदरम हूं, गाने वही हैं, सफर नया है, और शुरुआत कर रहे हैं वे तुमियो बंधु 2.0 फ्रॉम कॉकटेल 2, जो है इस हफ्ते नंबर 20 पर। लेकिन अब हम सीधा जाने वाले हैं जंगल की तरफ, फ्रॉम द मूवी 1, दिस इज ठुमक ठुमक ऑन नंबर 19।
4: नंबर 19।

0: शरारत का अपना एक अलग मैडनेस है। लेकिन इस गाने के बाद एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करनी है जिसका करियर मुझे बॉलीवुड की एक अजीब सी प्रॉब्लम याद दिला रहा है। यामी गौतम को स्टार बनने से ज्यादा एक्टर बनना पसंद था। पिछले 5 सालों को देखिए, 10वीं, अ थर्सडे, चोर निकल के भागा, ओ माई गॉड 2, उसके बाद आर्टिकल 370, जहां उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा किया, और उसके बाद आया वो नेशनल अवार्ड जहां पे हक में वो बनी शाजिया बानो बेगम। हर फिल्म में एक नई यामी दिखी, और अब नई नवेली में एक ऐसी औरत जिसके बारे में ट्रेलर खुद सवाल पूछ रहा है, क्या ये बहू है या डायन? लेकिन यामी के लिए असली गेम कुछ और ही है। इस इंडस्ट्री में एक एक्टर होने के साथ साथ एक अलग परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, स्टार होने की परफॉर्मेंस, विच मींस पीआर, पैपराज़ी, लुक पिक्चर्स, परसेप्शन, और यामी उस गेम को लेकर बिल्कुल क्लियर है।
1: In today's time, there is your PR, your paparazzi, your reviews, you have fans, you're getting mobbed, you're this. I can't do that. क्योंकि ऑडियंस को नहीं फर्क पड़ता है, उनको अच्छी फिल्म देखनी है, उनको अच्छा काम देखना है, वो वही देखेंगे उनको जो देखना है। तो आप ये परसेप्शन किसके लिए क्रिएट कर रहे हो? If I'm putting my heart and soul in a film, मैं अगर मैंने अच्छा काम किया तो आप लिखेंगे उसके बारे में। मैं आपको बोलूँ नहीं, आप ना और लिखो आप, और इवन इफ यू डोंट लाइक इट डजंट मैटर, बट यू राइट इट, आई वोंट फील कंफर्टेबल विद दैट, इट शुड कम फ्रॉम यू, आई कांट डू दीज थिंग्स बिकॉज दे आर नॉट मी।
0: चार, इसलिए यामी की फिल्मोग्राफी इतनी इंटरेस्टिंग है, वो हमें अपनी सेलिब्रिटी लाइफ नहीं बेच रही है, वो हमें अपना काम दिखा रही है, और अब उस काम का एक बिल्कुल अलग रंग। नई नवेली से नीति मोहन की आवाज में दिस इज भाभी तबाही, डेब्यूइंग ऑन नंबर 17।
2: Number 17.

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा Mirchi मुर्गा.
3: हेलो.
4: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
3: हेलो
4: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए. अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब.
3: मैं
4: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया. हाँ बेटा कैसे हो?
3: तुम कौन हो?
4: वही चीज मेमोरी भी है ना. तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
3: क्यों आ जाऊं?
4: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे. अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
3: तुम्हें बात करनी है?
4: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा. बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ.
3: क्यों मैं तुम्हारे पास? कौन हो तुम?
4: वो ये मेमोरी पहचानना बतानी है अंकल.
3: अरे किसका अंकल?
4: बेटा तुम्हारा अंकल.
3: ये कब आ गया?
4: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया. फोन काट दिया.
3: हेलो
4: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना.
3: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम.
4: वही लेवल 7.
3: अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ.
4: अग्रेशन.
3: कौन हो तुम मेरे?
4: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे.
3: अरे तू है कौन? तू ये बता.
4: ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे.
3: ऐसा है अपनी गोली डाल तो अपनी गांव में ठीक है?
4: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है. देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना. फिर
3: ऐसा है इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ. देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ.
4: ओह माय गॉड लेवल 15 वो सबके
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल.
6: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयाँ. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश

0: Sherwanis.
1: Shadi shopping ka complete destination. Fashion Queen.
0: Visit today. 1358 Oak Tree Road, Iselin.
2: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
3: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.

0: घर आए।
1: ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
2: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम। साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057।
3: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
4: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
3: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
5: Are your grocery bills giving you sticker shock every week? Are you cutting down on travel because of high gas prices? And why are we at war with Iran and Canada? Trump is making such a mess of everything for the common man while enriching himself and his billionaire friends. Let's vote for all Democrats this November so we can have a Congress that actually does its job. We don't need another 2 years of daily bad news. Be sure to vote for Democrats.
6: Paid for by Desi Blue, DesiBlue.org. Not authorized by any candidate or candidates committee.
7: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
8: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
10: 2108069।
11: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
12: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
11: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
3: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
15: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 16।

ये आवारापन, अरिजीत सिंह की आवाज में नया गाना लेकिन दर्द पुराना। और शायद इस वक्त एक अजीब सा सवाल भी है, क्योंकि इसी साल जनवरी में जब अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट अनाउंस किया था, तो लगा था कि यार एक आवाज बॉलीवुड से धीरे धीरे दूर जा रही है। लेकिन फिर 20 साल पूरे होने की खुशी में अरिजीत ने कहा, मिलते हैं इंडिया के 9 शहरों में। ये एक फेयरवेल नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है। पिछले 2 सालों में सच नहीं जमाना लगे धुन तेरे इश्क में गहरा हुआ, और अब ये आवारा पर जैसे प्लेबैक से पीछे हटने से पहले भी अरिजीत कह रहा हो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है।

लेकिन 20 सालों की कहानी में एक पल ऐसा भी है जब सारी परतें हटा दो, सारी चीजें हटा दो, प्रोडक्शन नहीं, ऑर्केस्ट्रा नहीं, बस आवाज, अरिजीत की आवाज।

इतने सालों में हमने अरिजीत को हजार कहानियों की, वो उन कहानियों के कैरेक्टर्स के पीछे नहीं होगा, बस अरिजीत होगा। और फिर वापस चलेंगे उस गाने तक जहां से उनकी कहानी ने एक अजीब सा मोड़ लिया था, फिर ले आया दिल। प्रीतम दा को पहले यकीन नहीं था वैसे, अरिजीत ने इसका स्क्रैच गाया था रेफरेंस के रूप में, लेकिन अनुराग बासु के कानों पे जब वो स्क्रैच पड़ा तो उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि यार ये आवाज तो चाहिए। और कभी कभी कुछ जादुई करियर्स ऐसे ही शुरू होते हैं, आप किसी और के लिए गाना रिकॉर्ड करते हो और दुनिया आपको सुन लेती है, 20 साल बाद वही आवाज अपना पूरा सफर खुद गा रही है। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग ऑफ द वीक, फिर ले आया दिल, मजबूर क्या कीजिए। स्पेशल रिक्वेस्ट।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची नौ लाका हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
2: वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाका हार चल रहा है। अगली कंटेस्टेंट जो है वो मेरे साथ लाइन पर है। लेट्स फाइंड आउट हु दैट इज। हेलो।
3: हाय।
2: हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: शीतल।
2: हाय शीतल, हाउ आर यू?
3: गुड, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, थैंक यू सो मच। हैप्पी नवरात्रि टू यू।
3: सेम टू यू।
2: ऑलराइट शीतल, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ और उसका जवाब देने पर डिपेंड करेगा कि आप अगले राउंड में जाते हैं कि नहीं जाते। ऑलराइट, मेरा सवाल अगले राउंड के लिए आपसे है कि कौन सी ऐसी इंडिया की सिटी है जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है? फटाफट से आंसर बताइए।
3: सिटी ऑफ द ड्रीम्स बॉम्बे।
2: बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। एंड बॉम्बे यानी कि मुंबई इज ऑल्सो द सिटी ऑफ ड्रीम्स इन इंडिया। थैंक यू सो मच शीतल फॉर पार्टिसिपेटिंग। कंग्रेचुलेशंस, आप अगले राउंड में पहुंच गए हैं।
1: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
5: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
6: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
5: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
9: Naan lakha wala haar pehna hai churai.
10: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
11: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
10: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
12: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit ViraniJewelers.com.
13: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
14: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
13: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
14: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
13: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
15: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
16: चलो इस बार दिवाली को नए तरीके से मनाते हैं। पटाखों के बदले मिठाइयों से सजाते हैं। फुलझड़ी की जगह काजू कतली और अनार की जगह रसमलाई का चलन शुरू करते हैं। रसगुल्ले को चरखी की जगह निपटाते हैं और खुशबू पटाखों की नहीं मीठे की फैलाते हैं। जरा दिखा दे दुनिया को कि स्वाद से कैसे दिवाली मनाते हैं। ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
19: Hey, hello! नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
7: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
2: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू।
7: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
2: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
1: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
0: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया।
20: हैं दीवाने।
10: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
21: अरे कहना क्या चाहते हो?
10: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
12: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
22: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
23: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
22: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
24: Number 14.

0: तबाही में विशाल मिश्रा की आवाज मोहब्बत के टूटने का एहसास देती है, लेकिन मुंबई ने एक और तबाही देखी थी जिसे हमने कभी सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखा। 26 नवंबर 2008 हम में से बहुत लोगों को आज भी याद है कि उस रात हम कहां थे, लेकिन किसी भी हादसे के बाद एक और जगह होती है जहां उस सच को याद रखना पड़ता है, अदालत में। प्रहार उस रात को फिर से दिखाने से ज्यादा उस रात के बाद की लड़ाई की कहानी है। उज्जवल निकम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उस रात क्या हुआ, सवाल ये था कि जो हुआ उसे अदालत के सामने साबित कैसे किया जाए। और शायद इसलिए राजकुमार राव के लिए भी ये किरदार निभाना सिर्फ एक रियल इंसान को पर्दे पर उतारना नहीं था।
1: तो जिम्मेदारी थी कि किस तरह से हम उनकी जिंदगी को पर्दे पर उतार रहे हैं, उन सच्चाइयों को कहानी के रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस सच्चाई को भी मेंटेन रखना, उनकी जिंदगी को, उनके तौर तरीके को, उनके बोलने के तरीके को कैसे मैं अपना पाऊं कि लोग जब देखें स्क्रीन पर तो वो राज को ना देखें, वो उज्जवल निकम जी को देखें। तो उसके लिए मेहनत थी, ऑफकोर्स मेहनत तो होती है जब एक डराने वाला काम होता है कि ये मुझसे इतना अलग दिखते हैं, बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जहां डर होता है वहां मजा भी आता है।
0: राजकुमार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, स्क्रीन पर राजकुमार राव नहीं उज्जवल निकम दिखाई दे। और यहीं प्रहार की कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुंबई ने 26/11 को अपने दिल पर झेला था, उज्जवल निकम को उस दर्द को सबूतों में बदलना था। कसाब की उम्र को लेकर अदालत में जो सवाल खड़े किए गए वो भी इसी लड़ाई का एक हिस्सा था, क्या कहा जा रहा है और सच क्या है। और ऐसी कहानी को म्यूजिक भी शोर से नहीं ठहराव से बोलना चाहिए। विशाल मिश्रा की आवाज और उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य के अल्फाज, प्रहार से मेरे रहते, डेब्यूइंग ऑन नंबर 13।

कुछ सिंगर्स की आवाज में एक अजीब सी चीज होती है, आप गाना भूल सकते हो लेकिन आवाज नहीं। आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपको गाने के बोल नहीं सुनाऊंगा, नो लिरिक्स, नो बीट्स, नो म्यूजिक, सिर्फ वो आवाज, और देखते हैं कितने सिंगर्स आप बिना गाना सुने पहचान पाते हैं।

सुर के साथ वो हल्का सा गहरापन, जैसे आवाज पर सफर की धूल जमी हो। मोहित चौहान, अब एक बिल्कुल दूसरी दुनिया।

नीचे से उठती हुई रेजोनेंस, ऊपर जाकर खुलने वाली आवाज, अदनान सामी, आपने कितने पहचाने? और अगर सारे पहचान लिए तो आपने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है कि इन आवाजों का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। किसी में हवा है, किसी में ब्राइटनेस, किसी में वो रेजोनेंस, लेकिन हर आवाज के पास अपना फिंगरप्रिंट है। और फिर आज की जेनरेशन में एक आवाज, जुबिन नौटियाल। जुबिन की आवाज में एक खास ठहराव है, नोट को पकड़कर रखने का, उसके अंदर थोड़ा सा दर्द छोड़ने का। और जब वही आवाज समझो ना में आती है तो गाना सिर्फ मेलोडी नहीं रहता, उसकी एक शक्ल बन जाती है। शायद प्लेबैक सिंगिंग का असली कमाल यही है। सुर सीखा जा सकता है, रेंज बढ़ाई जा सकती है, टेक्निक पॉलिश की जा सकती है, लेकिन वो आवाज जिसे 2 सेकंड सुनते ही आप कह दें ये कौन है, वो पहचान बनाई नहीं जाती, वो आवाज के साथ पैदा होती है। जुबिन नौटियाल की आवाज में फ्रॉम द मूवी 1, नंबर 11 पर, इसे समझो ना। नंबर 11।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
10: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन।
11: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
12: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
11: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
13: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
14: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
15: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: Radio Mirchi, it's hot.

0: आजकल हर फिल्म मेकर, हर आर्टिस्ट वाइब ही तो चेस कर रहा है, द कूल वाइब, द रेलेवेंट वाइब, द इंस्टाग्राम वाइब। लेकिन एक वाइब ऐसी है जिससे हर आर्टिस्ट डरता है, इररेलेवेंट होने की वाइब। एंड मे बी दैट्स व्हाई बॉलीवुड का एक ईरा ऑफिशियली खत्म होने वाला है, कॉफी विद करण। 22 साल, 150 से ज्यादा एपिसोड्स, बॉलीवुड के स्टार्स, उनकी गॉसिप, उनकी कंट्रोवर्सीज, उनके सीक्रेट्स। शो कोई ऐसे पाथ ब्रेकिंग टेलीविजन नहीं था, लेकिन करण जौहर ने बॉलीवुड मसाला गॉसिप को मानो जैसे संजय लीला भंसाली के फिल्म की तरह पैकेज कर दिया। प्रीमियम सोफा, डिजाइनर लाइट्स, एक्सपेंसिव गेस्ट, शैंपेन, रैपिड फायर राउंड, और बीच में वो सवाल जो अगले दिन पूरा बॉलीवुड एंड देश डिस्कस करता था। नेपोटिज्म जैसे वर्ड्स हमारी एवरीडे वोकैबुलरी का हिस्सा बन गए, और अब करण कह रहे हैं बस हो गया। लेकिन उनकी एक बात शायद इस पूरी कहानी की बेस्ट समरी है।
1: आप मुझे नफरत दो, आप मुझे मोहब्बत दे दो, जस्ट डोंट गिव मी इररेलेवेंस। आई डोंट वांट टू बी इररेलेवेंट, आई ऑलवेज वांट टू बी रेलेवेंट। आई डोंट माइंड योर हेट, एज लॉन्ग एज आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। नफरत छिड़क छिड़क दो, मोहब्बत छिड़क दो, बस डोंट इग्नोर मी। बिल्कुल मुझे फेलियर का खौफ नहीं है। अगर आप मैंने फ्लॉप फिल्म बनाई है, स्टिल यू मस्ट टॉक अबाउट, ताकि आई मैटर टू दैट एक्सटेंट कि आपने अगर मैंने बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर दी है तो आप प्लीज इसका जिक्र करो, बात देखो कि क्या हुआ, क्यों बनाई, क्या हो गया, दिस हैपेंड दैट हैपेंड, जस्ट डोंट नॉट टॉक अबाउट इट। क्योंकि इररेलेवेंस क्या है, खामोशी क्या है, इट्स द वर्स्ट फीलिंग फॉर एन आर्टिस्ट कि आप, मैं इतना इररेलेवेंट हूं कि आपने जिक्र भी नहीं किया फॉर माय शॉर्ट ऑफ माय शॉर्टकमिंग्स और माय फेलियर्स, एंड देयर इज नथिंग वर्स फॉर एन आर्टिस्ट इन दैट।
0: फेलियर से नहीं, साइलेंस से डर लगता है। और अब 22 साल की बॉलीवुड कॉन्वर्सेशन के बाद एक नई जनरेशन अपनी पुरानी कहानियों को नए तरीके से सुना रही है। स्कूल, पहला क्रश, दोस्त, वो पुराने दिन। सुनने में वैसे करण जौहर की दुनिया लगती है, लेकिन ये लव रंजन की सिनेमैटिक यूनिवर्स है। अरिजीत सिंह, कुमार एंड रोचक कोहली, द टीम दैट गेव अस तेरा यार हूं मैं, वेल दे आर बैक एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड पुराने दिन एंड इट डेब्यूज ऑन नंबर 9।
2: नंबर 9।

0: प्रवीण के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर. ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है
1: सर?
2: एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट.
1: पीछे हो गया
2: फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर.
1: रंग बता.
2: एक लाल एक हरा.
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
2: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली. लेकिन सिचुएशन है.
1: आसपास कोई भी नहीं है.
2: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
1: हिल नहीं रहे. एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल.
1: फटना नहीं चाहिए. आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है.
2: ठीक है.
1: हरा काट के देख धीरे से.
2: वन टू थ्री. कंग्रेचुलेशंस.
1: ताली बज रही है. कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे. ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा
2: है.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयां. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
3: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी का बिल देख के शॉक लगता है? गैस और डीजल प्राइसेस से दिमाग गर्म हो रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है? और मेडिकेयर, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी को काटने का प्लान है? हम आम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं. इसको सिर्फ एक चीज बदल सकता है, आपका वोट. आपके फ्यूचर में आपकी आवाज है आपका वोट. इस नवंबर जरूर वोट करें.
4: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे. ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
6: अपने घर में तो हर कोई शेयर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
7: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
8: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ
11: अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
11: शादी शॉपिंग का कम्प्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
12: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ.
16: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ.
17: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ.
18: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ. ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ. ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ. ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰਖਤਾ ਹੈ. ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1. ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1.
19: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने. सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
20: अरे कहना क्या चाहते हो?
19: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
21: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
22: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
23: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
24: Tera kya hoga, Kalya?
25: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
24: Ab mirchi kha.
26: Radio Mirchi, it's hot.
27: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
28: Number 7.

0: रामायण दिवाली पर आ रही है और साल के आखिर में 3 साल का एक और इंतजार खत्म होने वाला है, पठान जवान एंड डनकी ऑल इन 2023 एंड नाउ आफ्टर 3 इयर्स शाहरुख खान इज कमिंग बैक विद किंग। सिनेमा वैसे बदल गया है, शाहरुख खान भी बदल गए हैं। अब वो स्क्रीन पर मोहब्बत का इजहार करने से पहले दुनिया से लड़ते हैं, हाथ में बंदूक होती है, आंखों में गुस्सा और हर कदम के साथ एक नया एक्शन अवतार। लेकिन फिर कैमरा धीरे धीरे उनके चेहरे के करीब आता है और एक पल के लिए सारी आवाजें खामोश हो जाती है, हम बेबस हो जाते हैं। चाहे शाहरुख खान कितनी भी एक्शन फिल्म्स कर लें, चाहे कितने भी पंचेस मार लें, कितनी भी बार दुनिया को बचा लें, उस चेहरे को देखते ही हम किसी और ही वक्त में पहुंच जाते हैं। एक ऐसा वक्त जब शाहरुख के हाथ में बंदूक नहीं एक गुलाब होता था, जब उनकी आंखों में बदले की आग नहीं इंतजार की नमी होती थी, जब वो दुनिया से लड़ते नहीं थे सिर्फ एक दिल जीतने के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाते थे। DDLJ, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, वीर ज़ारा, हर फिल्म में शाहरुख खान का एक नया रंग था। हमने वो फिल्म्स पीछे छोड़ दी हैं, शाहरुख खान ने भी पीछे छोड़ दी हैं, लेकिन हमारा दिल वो अब भी वहीं अटका हुआ है। आज जब वो स्क्रीन पर किसी विलन को गिराते हैं तो थिएटर तालियों से गूंज उठता है, लेकिन जब वो बस मुस्कुराते हैं या आंखों से कुछ कह देते हैं तो हमारे अंदर का वो पुराना सिनेमा जाग उठता है। एक्शन काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उनकी रोमांटिक फिल्म्स की याद अब भी जिंदा है, एक पुरानी तस्वीर की तरह जो वक्त के साथ धुंधली तो पड़ जाती है मगर कभी मिटती नहीं। शायद इसलिए आंखों से तूने ये क्या कह दिया जैसा गाना एक गाना नहीं है, वो एक दरवाजा है टू दैट ईरा वेयर शाहरुख खान वाज द किंग ऑफ रोमांस, जहां बारिश अब भी हो रही है, जहां कोई ट्रेन अभी छूटी नहीं है, जहां एक लड़का अभी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है पर एक लड़की के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। और उस वक्त की एक धुन हमें फिर से सुनाई देती है, कभी खुशी कभी गम, संदेश शांडिल्या, सोनू निगम एंड अलका याग्निक। मेरा रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक, सूरज हुआ मध्यम।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
4: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
5: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
6: October 24th and 25th, हमर होल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitreeusa.org।
7: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
8: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
7: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
5: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
9: हेलो, नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
10: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
11: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड करेटा एवेन्यू।
10: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सुरों पर 16वीं को।
11: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
10: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Oh no!
15: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
16: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
17: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
18: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
7: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
14: अरे कहना क्या चाहते हो?
7: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
12: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
19: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
15: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
20: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5

0: अफसाना बनाया आपने। 21 साल बाद भी हिमेश की आवाज आती है और बिना किसी इंट्रोडक्शन के आपको पता चल जाता है कि दिस इज हिमेश रेशमिया। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हिमेश का गाना गाना इज अ वाइब। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिमेश रेशमिया ने सिंगर बनने का प्लान बनाया ही नहीं था। 2005 में जब आशिक बनाया आपने आई थी तो उसका गाना ओरिजिनली मिक्का पाजी को गाना था, दैट्स व्हाट द थॉट वाज। लेकिन मिक्का पाजी थे लंदन में। इसके बाद क्या हुआ ये बताएंगे आशिक बनाया आपने के लिरिसिस्ट, उसके राइटर समीर साहब।
1: मिक्का ने फोन किया कि सर अभी आप डमी आवाज कर लो, मैं आऊंगा तो गा दूंगा। अब डमी आवाज कहाँ ढूंढने जाए, अब उस वक्त मुश्किल था कि जिसे गवा लो, फिर सिंगर कोई बड़ा गा और नया सिंगर वो गाने को जस्टिफाई कर नहीं पा रहा था। तो हिमेश ने बोला कि यार एक काम करता हूँ, मैं गा के दे देता हूँ, जो आएगा मिक्का तो गा के

0: दिया, वो गाना जब सूट होने लगा तो इमरान हाशमी को सबको लगा कि नहीं आ रहे, मज़ा आ रहा है, कुछ अलग आवाज़ है, अब इसी को रखो, हटाओ मिका उका को, नहीं डालेंगे। उस चक्कर में गाना चला गया। अब वो गाना हो गया इतना बड़ा हिट कि अब वहाँ से फिर हिमेश का अपना वो गाने का खुद का गा के वीडियो बना, क्या क्या हुआ, इट वॉज लक बाई चांस वो मौका मिल गया।
1: बस यार, एक टेम्प्ररी आवाज परमानेंट हो गई, गाना रिलीज हुआ, आशिक बनाया आपने ने धमाका किया, और जिस आवाज पर लोग बोलते थे ये तो नाक से गाता है, हिमेश ने उसी आवाज को अपनी पहचान बना दी। 21 साल हो गए हैं आज हिमेश पहले जितना नहीं गाते, लेकिन जब भी गाते हैं आवाज नहीं आती, हिमेश नाम का तूफान आता है। इस हफ्ते वारू फॉरएवर फ्रॉम मिर्जापुर नंबर 4 पर है, और नंबर 3 पर है ये प्रेम मोल लिया का टाइटल ट्रैक कंपोज्ड बाय हिमेश रेशमिया हिमसेल्फ। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट हिमेश रेशमिया सॉन्ग वो गाना है जहां उन्होंने हिट मशीन बनने के बजाय एक मूड क्रिएट किया था, एक हिप्नोटिक ग्रूव, अ डार्क साउंडस्केप, और एक आवाज जो जैसे रात में तैरती है, लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं मैं, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ कर्ज़।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com। नवरात एकज स्पिरिट,
3: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथी लावी रहा छे पिस्काटवे मा
2: रमो गरबा डेली 11-19 ऑक्टोबर सांजे 7 कलाक थी।
3: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ, 19 9 यज्ञ अने 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट GayatriCenter.org टुडे।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सिया दीवाने।
8: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
9: अरे कहना क्या चाहते हो,
8: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट VIRANIJewelers.com।
11: ए हेलो, नवरात्रि का रंग और ओक ट्री रोड की वाइब्स।
12: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट ओपन एयर गरबा। मेयर जॉन ई मकॉमक और ओक ट्री रोड इंडियन बिजनेसेस लाए हैं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन।
13: 15 और 16 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक एट ओक ट्री रोड बिटवीन मिडिलसेक्स एंड कुरेटा एवेन्यू।
12: झूमिए उमेश पटेल के ढोल पर 15 तारीख को और रेक्स डिसूजा के सूरों पर 16वीं को।
13: एंड द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली फ्री।
12: रेडियो पार्टनर मिर्ची।
14: This hour is brought to you by Raj Jewels.
15: Listener mein back to back gana sunega.
16: Back to back gana sunega.
17: See, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
18: Only on Mirchi. It's hot.
19: Number 2.

0: इस गाने से सबको बहुत प्यार है, तेरा मेरा रिश्ता, लेकिन कुछ पल के लिए बस खामोशी रहने देते हैं, क्योंकि नाना पाटेकर के जाने की खबर को सिर्फ एक एक्टर की डेथ की तरह देखना मुझे बहुत छोटा लगता है। नाना उन एक्टर्स में से थे जिनके जाने के बाद सिर्फ उनकी याद नहीं आती, एक सवाल भी रह जाता है, हम उनसे और कितना कुछ देख सकते थे। नाना की ग्रेटनेस समझने के लिए उनकी पूरी फिल्मोग्राफी की जरूरत नहीं है। याद करते हैं परिंदा और याद करते हैं वो सीन, जैकी श्रॉफ खड़े हैं सामने, नाना को जिंदा जलाया जाने वाला है, और उस चेहरे पर डर भी है, गुस्सा भी है, और जिंदगी को पकड़ के रहने की वो बेचैनी भी।
1: पागलपन मत कर अपने भाई की तरह, नहीं तो तू भी मरेगा। मैंने अपना करके तेरे से इतनी बात की, एक बार टांग मेरा, तेरा भाई था इसलिए उसको गोली मार दी, कोई दूसरा होता तो जिंदा जला देता उसको।
0: फिर आई वो कहानी जिसका नाम है खामोशी, एक आदमी जो सुन और बोल नहीं सकता
1: उसको गोली मार दी, कोई दूसरा होता।

0: आवाज पूरी नहीं निकलती लेकिन दर्द पूरा पहुंचता है और फिर वही नाना हमें दिखे वेलकम में।
1: अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
2: कंट्रोल कंट्रोल उदय।
0: याद भी सुनते हैं तो हम हंस देते हैं। तीन अलग अलग सीन्स, तीन अलग अलग दुनिया और एक एक्टर जो हर बार अपने आप को पीछे छोड़ देता था। लेकिन नाना की कहानी का एक हिस्सा मुझे हमेशा थोड़ा उदास करेगा। शायद वो एक ऐसी इंडस्ट्री में, एक ऐसे सिनेमा में एक्टर थे जिसने उनकी पूरी काबिलियत को कभी समझा ही नहीं। उन्होंने परिंदा में जो किया उसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने उनके साथ फिर कभी काम नहीं किया। उन्होंने जो खामोशी में किया उसके बाद संजय लीला भंसाली के साथ वो सफर दोबारा नहीं हुआ। और कभी कभी सोचता हूं अगर उन्हें वो रोल्स मिलते, वो फिल्म मेकर्स मिलते, वो अपॉर्चुनिटीज मिलती जो उनकी एक्टिंग डिजर्व करती थी, तो क्या नाना पाटेकर की कहानी और बड़ी होती। लेकिन शायद दुनिया ने उनके लिए एक और कहानी लिखती। लोगों ने उनकी इंटेंसिटी देखी और उन्हें एक गुस्सैल आदमी समझ लिया। वो आवाज सुनी लेकिन पीछे की नरमी नहीं देखी। उनके किरदार देखे लेकिन शायद उस एक्टर की पूरी रेंज नहीं देखी। और यही नाना की कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे दुख भरा हिस्सा है। उन्हें जितना मिला उसे उन्होंने यादगार बना दिया, लेकिन जो नहीं मिला उसकी कमी हम आज भी महसूस कर सकते हैं। आज नाना को याद करते हुए दुख तो होता है लेकिन उससे ज्यादा नाज होता है कि हमारे सिनेमा ने हमें नाना पाटेकर दिया। एक ऐसा एक्टर जिसके कुछ किरदार फिल्में खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहे, हमारे साथ चले। नाना पाटेकर को दिल से सलाम। मिर्ची टॉप 20 पे द नंबर वन सॉन्ग वंस अगेन दिस वीक इज धुरंधर का गहरा हुआ। नंबर वन।

गहरा हुआ और ये सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन नाना पाटेकर की एक बात दिल में रह गई। हमने उनका बहुत सारा कमाल देखा, लेकिन शायद वो सब नहीं जो वो कर सकते थे, और शायद इसी में उनकी लेगेसी का दर्द भी है और नाज भी। कुछ एक्टर्स चले जाते हैं, लेकिन उनका काम हमेशा दिल में रह जाता है। मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम, मिलूंगा आपसे अगली बार ऑन द मिर्ची टॉप 20।